आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

जी मेरा।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: चुप हो जाना, चुप।
2: दिल मेरे तू दीवाना है।
1: लो छोटे मालिक का गीत गूंजा, अब ये चुप हो जाएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shimaru Filmi Gaane.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
3: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

0: on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अच्छा राहुल, कुछ अपने बारे में बताओ ना।
1: मुझे फास्ट म्यूजिक अच्छा लगता है। I like beats, fast beats। तू जो
2: है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: भी पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है, ऐसे तो सासु नाही जाई देली बहरी, कहेली पोतोहिया बन जाई सहरी। डेडिकेट करती हूँ आपको एंड सोनी मैम, श्रुति मैम, दिव्या मैम, भारती मैम, मनोरमा मैम, निशा सिंह एंड निशा पांडे, सुधा सिस्टर और शिल्पी सिस्टर, रोशनी सिस्टर, शाहिदा अंसारी एंड प्यारे प्यारे और लिसनर को। तो चलिए आपको हम सुनाते हैं और आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रामझिम 94.4 FM पे।
1: एगो औरत दुर्गा माई के दर्शन करे खातिर अपने पति देव से मनुहार कर रहल बड़ी, तयाई सुनल जाओ उनकर भाव का बा।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें

0: अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
2: रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे अभी जो गाने हम सभी सुन रहे थे, और उस गाने को प्ले करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि इस गाने की फरमाइश जो की थी उन्होंने बीच में से गाने का नाम बता दी थी, और हमें लग रहा था कि पता नहीं ये गाने है कि नहीं। तो आप जब भी गाने का फरमाइश करें आप मुख्य नाम बताएं, ताकि हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट ना हो आपकी फरमाइश पूरा करने में और समय बर्बाद ना हो। गाने चेंज करने के बाद से कुछ समय बर्बाद चले जाते हैं, और जो गाने बजे हुए रहते हैं और जो समय कट जाते हैं तो फिर लौट के नहीं आते हैं। तो आप उस गाने की फरमाइश करें जिसको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और आगे अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। इस गाने की फरमाइश करते हैं संदीप जी, और गाने का बोल देते हैं नफरत की दुनिया छोड़ के खुश रहना मेरे यार। तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए देखा जाए, लिखा गया है कि सोने भाई प्यार में केहू के चैन तो केहू के खुशी छीन लेवेला, प्यार कहीं नहीं सजा पहला के, सुपर सॉन्ग। दिलीप जी मैसेज किए हुए हैं, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बिल्कुल दुर्गा पंडान सैया हमरों के ले ले चली, काफ़ी प्यारा सॉन्ग, थैंक्स सिस्टर मुझे सुनाने के लिए, मैसेज करती हैं रोशनी। आगे बढ़ते हैं, अब अगले गाने की फरमाइश सुनते हैं हम सब रेडियो एम छम 94 FM पे।

रेडियो रेमसीएम 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे समय जो है समाप्ति का हो चुका है, तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त किया जाए और अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्ति करते हैं। यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे। सुरेश जी गाने के फरमाइश किए हुए त्रिबिरमा से और गाने का बोल देते हैं, माँ मुझे माँ से मिला दें। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे। अभी मेरे पास कई हैं और मैसेज सारे, तो कई गाने का फरमाइश तो हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं और अगले मैसेज मेरे पास अब आगे अगले दिन शामिल करने का प्रयास रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सब सुनते रहे रेडियो रेमसीएम 94.4 FM जो हमेशा कहता है सुने दिल से। नमस्कार।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6550।
4: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
5: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
10: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
10: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
5: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
10: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
5: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
10: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034 48652 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत तानी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
0: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
1: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
1: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
1: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर सहयोग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
1: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
2: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
3: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया है आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527-88291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम बा गोडछू के भारती मैडम जी, हमू आगिल बानी और हमरो भी हाजिरी लगा दी। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ पे सबकी तरफ से मैसेज पहुँच रहे हैं, तब तक चलिए मेरी तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग तब तक एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि हमारे तरफ से था, और बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हाय भारती जी और मनोरमा जी नमस्कार, इरशाद मास्टर घनाव ग्राम धनाव से लिख रहे हैं कि आपके कार्यक्रम के साथ जुड़ गया हूँ। और मैडम जी हम लोग तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि हाय मैम, और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि हाय आरजे भारती मैम वेरी गुड आफ्टरनून, और लिख रहे हैं कि हमारा और लिख रहे हैं कि हमारे अजीत मित्र उत्तम सोनी भाई उमा शंकर भाई और बिरजू भाई को हमारे तरफ से सलाम बोल दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं फिरोज से भागलपुर बिहार से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम के नाम रिमझिम की फिजाओं में आपकी आवाज़ आती है, और लिख रहे हैं कि हर उदास चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाती है मनोरमा मैम, आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू है सुनते हैं दिल कह उठता है, आज का दिन भी बहुत खूबसूरत है। और लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम के योर वॉइस के नाम आवाज़ों को ये सफ़र यूँ ही सुहाना बना रहे हैं, और लिख लेंगे दोस्तों का हर रिश्ता दिल से जुड़ा रहे। और लिख रहे हैं कि योर वॉइस योर चॉइस में जब मनोरमा मैम की आवाज़ गूंजती है तो रिमझिम की हर महफिल और भी हसीन लगती है, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और मैसेज करने वाले हैं इरशाद मास्टर जी के नाम से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इससे पहले आप फरमाइश पहुँची हुई और लिख रही कि सलाम अलैकुम मैम, कैसे हैं? ठीक हैं, और मैं फरीदा खातून, और मेरा भी एक फरमाइश है, प्लीज़ बजा दीजिएगा। और तो चलिए बिना देरी किए आपकी फरमाइश को हम पूरी करते हैं, और गाने के बोल हैं तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 पर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं आप सभी को बता दूं, जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं। और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले कर।

मिस्टेकिंग हो गई थी मुझसे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, मैम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, और लिख रहे कि एक गीत की फरमाइश कर दिया हूँ। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह जी, अविंतिका सिंह जी, अर्चित सिंह जी, और रुद्रपुर से, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते सिस्टर, मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह, जिला सिवान महाराजगंज के छोटे से गांव पकवलिया टोला बलुआ से हूँ। और लिख रहे हैं कि और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं, और लिख रहे हैं कि बिना बतौले वो ना जाने काहे हमसे दूर। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं, और लिख रहे हैं कि बिना बतौले वो ना जाने काहे हमसे दूरी कहाँ लिखा, बिछड़ के वो हमार मोहब्बत अधूरी छोड़ दी हमें, हमार मुकद्दर में खाली गम बात तक आ भई, खुदा उनके ख्वाहिश तक पूरा कर दी है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि मुझे भी भक्ति गाने सुनना है जो कि पवन सिंह की आवाज़ में है। तो जी मैं बता दूँ आपको कि मैं भक्ति गानों की फरमाइश पूरी नहीं कर सकती, प्लीज़ आप दूसरा दीजिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मनोरमा जी, मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। और लिख रहे हैं कि कल से शुरू से वेट किया हूँ और मेरा गाना नहीं बजा, तो प्लीज़ बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो 90.4।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, जो कि मैसेज पहुंच गया लिख रहे हैं कि शुक्रिया मनोरमा जी गाना सुनाने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र बरौली से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। आने पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, कि नमस्ते मनोरमा जी, मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से। मनोरमा जी आपकी आवाज़ बहुत मीठा आ रहा है, और लिख रहे हैं कि थोड़ा आवाज़ को आप बढ़ाइए, और आज प्रोग्राम बहुत देरी से आपने चालू किया है, और लिख रहे हैं हेलो माई चॉइस का रिकॉर्डिंग चल रहा था क्या। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और मैं बता दूँ कि जी रिकॉर्डिंग चल रही थी इसलिए सो लेट से स्टार्ट हुआ, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम क्या हाल है। मैम जी तो मैं ठीक हूँ, और आप बताइए संजय जी कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि मैम जी नमस्ते, और हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे थे, और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह जी, और गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुंची हुई है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं बिना देरी किए, और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के ये बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि वॉइस के माध्यम से है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी।
1: मैम आपने हमारा गीत सुनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंकल सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ।
0: और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में वॉइस पहुंची हुई है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है

वालों के लिख रहा है, जो कि लिख रहे हैं कि ये सॉन्ग मेरे दोस्त को है और प्लीज मैम सुना दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि क्या हुआ मनोरमा जी, नाराज हैं क्या? तो जी नहीं, आप लोग से मैं क्यों नाराज होंगी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और मैसेज करने वाले हैं धनंजय कुमार सिंह जी, जो कि जिला सिवान महाराजगंज के छोटे से गांव पकवली अटोला के रहने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि और लिखने की तहार नाम लेत भोर से साज करीला, हर पल तोहरा के अपना पास देखीला, जितना बेर सांस ना लेहा थकबू तुम ओले अधिका हम तोहके याद करीला। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार सिंह जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हाय मैम, माय नेम इज़ विजय कुमार, जमुई बिहार से, और बहुत ही सॉन्ग चल रहा है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग चल रहा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि हमरो हाजिरी लगा दी, हम सुबह से 10 बजे तक रेडियो रिमझिम सुनीला, और लिख रहे हैं कि हमारा टाइम लिख रहे हैं कि और भारती दीदी और मनोरमा दीदी को गुड आफ्टरनून, तो बहुत बहुत स्वागत है आपकी भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है और लिख रहे हैं कि नमस्ते, मैं संजय यादव दुबई से, और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM पे ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी, दुबई से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि आंखों की जुबां वह समझते नहीं, हाथों से हम कुछ कह सकते नहीं, अब तो बस यही दुआ है कि खुदा से, कि वो खुदा समझ ले, हम कह नहीं सकते। और मैसेज करने वाले हैं तो प्लीज़ नाम मेंशन करिए, आप नाम मेंशन नहीं किए और लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने को हम बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये बेहद अच्छा सॉन्ग। और गाने की बोल है ये दुआ है मेरी रब से। तो चलिए एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर
2: 97 644।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मनोरमा मैम, मुझे भी गाना सुनना है। और लिख रहे हैं कि मैं रेशमा पठानपट्टी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करें।

0: और इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं अवतार वाला हूँ साके खास से, और लिख रहे हैं कि और मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई और लिख रहे हैं कि मैम प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए, और लिख रहे हैं कि और ये सॉन्ग हमारे दोस्त आकाश भाई की तरफ से है। तो चलिए आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करते हैं, और लिख रहे हैं कि गाने के बोल हैं, सपनों में आई एक हसीना नींद चुरा के ले गई। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।
1: मुझको

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना प्ले करने के लिए, और लिख रहे हैं कि और हमारे आकाश भाई भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं सॉन्ग सुन के, तो और लिख रहे हैं कि नीरज सिंह गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, आने पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत अच्छा रेडियो मनोरमा मैम बजा रही हैं, और लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, आने पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और आज मैं भी आप सभी के बीच एक लिसनर की तरह जुड़ गई हूँ, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। आज मुझे भी एक गाना सुनने का मन कर रहा है, और लिख रहे हैं कि मनोरमा जी आज एक गाना प्ले कर दीजिएगा, गाने की बोल है तू मेरी अधूरी प्यास की, तू आ गई मन को राज राज, और ये गाना मैं अपनी सभी लिख रही, और ये गाना मैं अपने दोस्त प्रीति और बहन स्वीटी और आप सबके साथ सुनना चाहती हूँ, और लिख रही है कि प्लीज़ गाना बजा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो चुके हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857288291 पे जुड़ सकते हैं, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप 7277166596 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मैम, और लिख रहे हैं कि नमस्कार मैडम जी, नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं पूरे आपकी टीम को। और लिख रहे हैं कि पूरे रेडियो रिमझिम सुनने वाले को दिल से शुभकामनाएं। और लिख रहे हैं कि मैम नए पारा भी रही जिला बलोद छत्तीसगढ़ से लीला साहू जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी। और लिख रहे हैं कि मुझे भी ये गाना सुनना है जी, आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रानी मुखर्जी को प्यार भरा नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, और हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग भारती मैम। और लिख रहे हैं कि और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी, दुबई से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं लीला साहू जी, और लिख रहे हैं कि मैं पारा भिरई से जुड़ा हुआ हूँ, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और गाने की बोले आजकल की लड़कियाँ,
1: आजकल

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने के बोल थी आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, और इसी के साथ मैसेज पहुंच गया और लिख रहे हैं कि धन्यवाद मैम गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं लीला साहू जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय गुड आफ्टरनून मनोरमा जी, और लिख रहे हैं कि धनंजय कुमार सिंह बलुआ से, और लिख रहे हैं कि फिलहाल मैं अभी दुबई में हूँ, और लिख रहे हैं कि मेरे भी एक गीत की फरमाइश है प्ले कर दीजिएगा। तो और लिख रहे हैं कि तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम मैं मुन्ना पासवान सासा मूसा से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपकी भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे और यहाँ पे लिख रहे हैं कि हाय मैम मैं लिख रहे हैं कि मुझे भी गीत सुनना है तो प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो और मैसेज करने वाला है जितेंद्र धाकड़ गुना जिला से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी हाजिरी भी लग गई, और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं आपके गाने को हम प्ले नहीं कर सकते क्योंकि आपके गाने को कल ही प्ले किए थे, तो एक सप्ताह बाद ही आपके गाने को हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए, और लिख रहे हैं कि दिलवाले फिल्म का कोई भी गाना बजा दीजिए, और मैसेज करने वाली हैं रिश्मा पठानपट्टी से। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ही।

0: जी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट देख लेनी नू सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है हाँ
4: भरोसे वाले से लेंगे
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
0: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स मुंसिफ कोर्ट के सामने मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी। Thank you.

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिंगजिन 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं, और लिखेंगे थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, लिखेंगे गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद। और मैसेज करने वाली हैं रेशमा जी जो कि पठानपट्टी से जुड़ी हुई हैं, और

मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि बेटी बाप की वो दौलत है जिसे दुनिया

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने की बोल थी चांद तारे फूल सबनम, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय गुड आफ्टरनून मनोरमा जी, और मैं धनंजय कुमार सिंह जो कि बलुआ से हूँ, और मुझे भी गाना सुनना है।

थी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि क्या हाल चाल है मैडम जी, और लिख रहे हैं कि मैं अजीत कुमार सा और फिटलरी बिहारी हरियाणा से, और लिख रहे हैं कि क्या हाल है जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और मैं बता दूं कि मैं तो ठीक हूँ, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले हैं दुर्गेश जी जो कि आजमगढ़ यूपी से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हेलो मनोरमा मैम, क्या हाल है, और बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी, और लिख रहे हैं कि मैं विजय कुमार, मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करेंगे। और गाने की बोल है डफली वाली डफली बजा। तो चलिए बिना देरी किए इस गाने को हम प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज के बाद, फिर मिलते हैं दोपहर न्यूज के बाद आप लोग से।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: की शक्ति, आस्था की ज्योति और अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व है नवरात्रि और विजयादशमी।
5: इस पावन अवसर पर श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी, प्रदेश महासचिव जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार सह भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 मांझा ने समस्त क्षेत्र वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है।
4: उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, हर परिवार में सुख समृद्धि आए और समाज में प्रेम सद्भाव एवं भाईचारे का भाव और सशक्त हो।
5: ये विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशाओं का संचार करे तथा सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: जय माता दी, शुभ दशहरा।
6: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: From $10 trillion of GDP,
4: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 trillion थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 trillion की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 trillion की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 trillion की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
0: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
4: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
5: मटेरियल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट।
6: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट at AIR News Hindi और पब्लिक पर at AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारत में टीवी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीवी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीवी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीवी के खिलाफ भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
8: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
10: शक्ति की उपासना, आस्था की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर आया है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
11: इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के जदयू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पटेल जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर परिवार खुशहाल रहे और गोपालगंज में आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
10: विजयादशमी का ये पावन पर्व हम सभी को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री प्रमोद कुमार पटेल जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
12: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
11: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
11: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
11: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
14: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
15: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
15: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
10: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
15: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
10: संपर्क करें 84710 3992 या 9765

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9770-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
4: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: छोटी सी ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776665। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा जी आपका शुक्रिया अदा किस और लिख रहे हैं कि मनोरमा जी आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं, आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूं। खुदा ने बस इतना सिखाया है मुझे कि खुद से पहले मनोरमा जी आपके लिए दुआ करूं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और बहुत ही खूबसूरत लाइन थी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राधे राधे भारती जी, मैं अरविंद चौहान सिवान से, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपके गाने को हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि डफली वाले सुपर सॉन्ग मनोरमा जी बहुत बेहतरीन साउंड बजा रही हैं आप, और मैसेज करने वाले हैं रोशन टेलर जी ग्राम धनाव से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई है और लिख रहे हैं कि हेलो मैम जी, गुड आफ्टरनून, और मुझे भी गाना सुनना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करेंगे और मैसेज करने वाले हैं दुर्गेश आजमगढ़ यूपी से। तो चलिए आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM के लिए। बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने के बोल है, पीले पीले वो मेरी रानी। तो चलिए एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के लिए बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।
1: ना हम कम है अनिल।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और गाने की बोल थी पीले पीले ओ मोरी रानी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है और लिख रहे हैं कि मेरा गाना चलाने के लिए धन्यवाद मैम जी, और लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ बेस्ट है मैम जी, कितनी सुरीली है। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, और मैसेज करने वाले हैं दुर्गेश आजमगढ़ यूपी से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि मनोरमा जी बरसात आए तो जमीन गीली ना हो, धूप आए तो सरसों पीली ना हो, आपने यह कैसे सोच लिया कि मनोरमा जी आपकी याद आए और पलकें गीली ना हो। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और काफ़ी बेहद लाइन थी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं नीतीश कुमार मोहम्मद मोतिहारीपुर मुजफ्फरपुर से जुड़ा हूँ, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। ये बेहद सा सॉन्ग और गाने की बोले जान तेरे नाम करते हैं। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
6: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
5: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
6: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
5: कहाँ?
6: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
7: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
8: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
7: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
8: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
7: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
8: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
9: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर S. हैदर जी आ गइल बनी, यहाँ के

0: आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतानी, तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903769015 पे।

से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:08 हो गए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, आई एम आफ्ताब आलम फ्रॉम साकी खास, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी फरमाइश है, प्लीज़ बजा दीजिए, और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार जी, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई है। जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल है जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि जिसके लिए सब कुछ लौटा दिया हमने, वो कहते उनको भुला दिया हमने। जिसके लिए सब कुछ लौटा दिया हमने, वो कहते उनको भुला दिया हमने। हम उनके आंसू पूछने, हम तो उनको आंसू पूछने इल्ज़ाम दे दिया उनको। और लिख रहे हैं कि आंसू पूछने के इल्ज़ाम दे दिया उनकी। और लिख रहे हैं कि मैम गाना प्ले कर दीजिए, और गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से है, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और गाने की बोले जा अब पलट के देख अपना, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने के बोल थे जहिया वादा से भूल गई हूँ, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यार यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानक पूरा पंडिता पंजाब से किशोर साबलिनिया, सावित्री साबलिनिया, सुमन साबलिनिया, बेटी अंशु के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और लिख रहे हैं कि कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, और लिख रहे हैं कि हम भी रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे आने पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धीरे से मैम मेरा भी फरमाइश पूरी कर दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार जी जो कि हिटलरी बिहार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM पे।

0: ए बाबा, घर भर के लोग बीमार बा, कहाँ जाएं?
1: दगा है इतना परेशान बाड़ू, चल जा मिर्जापुर मोड़ डॉक्टर बाबा के लगे।
2: जी हाँ, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, पागलपन, बांझपन, स्त्री रोग, शिशु रोग, गठिया, बवासीर, भखंदर, आँख, कान, नाक और दांतों के सफल इलाज के लिए आप भी मिर्जापुर मोड़ पर मिलिए डॉक्टर वशिष्ठ बाबा से।
3: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
4: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
3: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
4: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
5: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
6: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291। यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:24 हो चुके हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हम पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार शाह जी, और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम जी मेला घूमने गई थी कि नहीं। तो जी नहीं, अभी तो मेला नहीं लगा हुआ है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा मैम, मैं मुन्ना पासवान सासा मूसा से जुड़ा हूँ और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार लाइन जुड़ी हुई है, और लिख रहे हैं कि प्रेमी प्रेमिका से, डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बूढ़ा बोला, हमारी गाय नहीं मिल रही है, दिखे तो बताना। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। आ रहा है मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि दिन बीत जाते हैं सुहाने यादें बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, पर दोस्तों हमेशा दिल के करीब रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आंखों में पानी बनकर। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग चल रहा है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है, और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए शुक्रिया। और मैसेज करने वाले हैं परिस खान दुबई से जुड़े हुए हैं, दुआ कतर से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है मैडम जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैसेज करने वाला है नए पारा धीरे से लीला साहू जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और आप मैसेज पहुंचा हुआ है, और लिख रही हैं कि मैं मुझे भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाली हैं प्रीति जी, और माझा की रहने वाली है जी। तो चलिए प्रीति जी, आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने के बोल थी पिया जी के मुस्की, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम नमस्ते, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। और लिख रहे हैं कि असनी गया जिला से मदन चौधरी, और लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं सानिया नवादा से, और लिख रहे हैं कि क्या हाल है मैम। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं, और आप कैसे हैं ये बताइए। और लिख रही हैं कि मैम मुझे भी गाना सुनना है, और गाने की बोल है अखिया के काजल। और लिख रही हैं कि सबसे पहले आपको, और लिख रही हैं कि सबसे पहले आपको और सुनने वाले ओरिजिन। और तो चलिए आपके गाने को बिना देरी किए हम प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470309092 या 9765665750।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707-06-575।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956 97644।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिंजिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और हमें मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाली है सानिया जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम क्या हाल है, और मेरा भी गाना बजा दीजिए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाली हैं आफरीन जी, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम नमस्ते, मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए, और गाने की बोल है दिलवाले फिल्म का कोई भी गाना। और लिख रहे हैं कि मुझे दिलवाले फिल्म का गाना सुनना है, और गाने की बोल है जीता था जिसके लिए। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मैम गाना बजाने के लिए शुक्रिया। और मैसेज करने वाले हैं मदन चौधरी जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि चूँकि लिख रहे हैं कि हेलो मैम क्या हाल है, मेरा भी गाना बजा दीजिए। और लिख रहे हैं कि मैं और लिख रहे हैं कि मेरा नाम अलीसा है और प्लीज़ मैम मेरा गाना बजा दीजिए। तो चलिए अलीसा जी, आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करेंगे। और गाने की बोल है भाई नहीं हम बवरिया और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए प्ले करते हैं आपके गाने को और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और शो चल रहा है और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि दिल से थैंक यू गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाली हैं अलीसा जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं आज का शो सुपर से भी ऊपर रहा, इतना अच्छा शो चलाने के लिए आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। धनीश कुमार मिश्रा जी दिल्ली से जी। तो सब आप लोग की वजह से, क्योंकि आप लोग ही बहुत ही अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश जो की थी, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश जो ये थे लोग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा जी जाते जाते कार्यक्रम समाप्त करके भरत शर्मा का कोई भी गाना चला दीजिएगा। तो जी बिल्कुल। और सबके तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुंच गया है। और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ग्राम अश्मी गुरारू गाय जिला से। और लिख रहे हैं कि माता देवी कौटल्या कुमार और मुझे भी गाना सुनना है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके गाने को हम प्ले नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है। और यहाँ पर मैसेज पूछ गया जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना प्ले कर दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं आफ्रीन जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपकी हाजिरी लग चुकी है। और मैं बता दूँ तो सुलटाओ समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291। और अगर कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 72776 1696 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और मैं लूँगी आप सभी से विदा। और इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम सच में ही बहुत अच्छा लगता है बहुत। और मैसेज करने वाले हैं जयकिशोर प्रसाद जी। और मैं आप लोग से लूँगी विदा और मिलूँगी अगले दिन। तब तक रखिए अपना ख्याल। और जाते जाते यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है, इनके गाने की फरमाइश को पूरी करती हुई लूँगी आप सभी से विदा। और मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 1100 1।
4: खादी सिर्फ एक

0: आदि भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। दिल बोल।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
15: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
5: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
4: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
5: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ना कुचल जा? आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
4: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
3: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
4: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
5: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
6: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
5: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
6: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029 94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिधवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

0: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबके दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494। जी हाँ, 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
3: हेलो
4: जी, आपको स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में।
3: थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
3: क्या खैरियत है जनाब?
4: जी सब बढ़िया है, अपना बताइए।
3: मेरा भी ठीक है।
4: वैसे
3: बहुत बहुत शुभकामना हो आपको और आपके परिवार को और रेडियो रिंगजिम को।
4: जी जी, आपको भी नवरात्रि के लिए सारी शुभकामनाएं।
3: और सब बताइए।
4: जी सब बढ़िया है। नाम बता दीजिए अपना।
3: मेरा नाम टाइम कैश।
4: जी
3: टाइम कैश नाम।
4: और कहाँ से?
3: माझा चलाने वाली हूँ
4: जी। तो क्या आप हेलो माय चॉइस में पहली बार कॉल की है?
3: नहीं, हम लोग कॉल करते हैं।

0: सुनाना भी चाहती हैं।
1: आप सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, सभी दीदी लिसनर को, सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं, जो भूल गए जो बच गए हैं उन सभी को और लिसनर को सुनाना चाहती हूँ।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: ओके।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते प्रणाम और जय माता जी और राधे राधे। कैसन वाणी?
0: नमस्ते प्रणाम। राधे राधे।
1: जी जी, मैं रानी बात कर रही। अगर बुलाई थी तो हम जागरण करती रहे। नदी रहा का बुलाई नहीं आई हमारा के
0: ना जी रुआ के हम कहे बुलाए।
1: और बताई रुआ कैसन वानी है? बड़ा दिनों के बाद रुआ से बात होता।
0: जी जी।
1: और नाश्ता वास्ता हो गई बा?
0: जी नाश्ता तो हो गई बारा। और भैया की ना
1: और कल के तो भूखा रहनी ऐसा हो गई बा। और एक ही दिन में बुझाता जे खाना कितना फीका मिलल बा। और रुआ बताई करे कितना दिन?
0: जी जी हम तो करे नहीं, लेकिन ये पर ना कहीं।
1: अच्छा चली कौन बात ना। और साथी हमी के भूखा रहे ऐसा
0: चली।
1: और माता रानी से ये हम कहले रहे जी की उसे आगे ले जाये। और काफी तुर्की में रहुआ जाई हर भारती जी
0: गाँवी।
1: चलिए आज काफी लोग लाइन में लागल हुई। नवरात्रि के माहौल चला था तो आज सुनो तरी सोचे तो आज नवरात्रि सॉन्ग बजा दी रहुआ।
0: जी जी बिल्कुल बता दी कौन सा?
1: जी पवन सिंह जी की आवाज में ही गाना बा। बहुत पुराना गाना बा रहुआ, ज्यादा जो है

परी मिल गई तुरंत, और गाना के बोल बनी है तो मैया लोहा आ गई, एक तुरंत सर्च करें तुरंत आ गई और गाना प्ले कर दी, और सब लोग हम सब अरे डिक्टेट कर दे तनी रहो के दोनों आदमी के, और जितना आदमी सुना तनी सबको आगे भी कॉल नहीं, बहुत लोग लाइन में लगा बैठा।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-053-69-015 पे।
10: ए बाबा, घर भर के लोग बीमार बा, कहाँ जाएं?
11: दगा है इतना परेशान बाड़ू, चल जा मिर्जापुर मोड़ डॉक्टर बाबा के लगे।
12: जी हाँ, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, पागलपन, बांझपन, स्त्री रोग, शिशु रोग, गठिया, बाबासीर, भखंदर, आँख, कान, नाक और दांतों के सफल इलाज के लिए आप भी मिर्जापुर मोड़ पर मिलिए डॉक्टर वशिष्ठ बाबा से।
13: Now pick your phone up.
14: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
16: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
16: क्या हाल है खंजू जी?
15: जी जी ठीक है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
16: सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके सूरत के लिए।
15: जी जी, आपको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।
16: कर रहे हैं कि नवरात्रि आप कर रहे हैं कि
15: नहीं? नहीं कर रहे
16: जी,
15: तबियत सही नहीं रह रहा इसकी वजह से नहीं कर रहे।
16: कोई बात नहीं, तो लास्ट वाला कर लीजिएगा।
15: जी जी,
16: आपसे बताइए मौसम कैसा है गोपालगंज का?
15: मौसम तो ठीक है, हल्का धूप निकला हुआ है।
16: रात को यहाँ भी बारिश हुआ था और सुबह में भी 10 बजे तक बारिश हुआ है दिल्ली के अंदर में, लेकिन अब धूप निकल गई है और गर्माहट आ गई है, इसलिए तो दिल्ली पहाड़ी इलाका है ना, थोड़ी देर में गर्मी उत्पन्न हो जाता है। आगे निकल गया है, आसमान बिल्कुल चंगा हो गया है, तो यहाँ से नस्तीफा नहीं हुआ कि नहीं? हमको लगता है कि लास्ट चल रहा है कॉल।
15: नहीं, अभी दो कॉल और रिकॉर्ड करना है।
16: दो कॉल और लेना है
15: जी।
16: मैं रोजाना पूछता हूँ कि भारती जी कहाँ है, हमारे रानी मुखर्जी जी वो अपने काम में लीन है, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, रानी मुखर्जी जी से उतना वार्तालाप नहीं हो पाई थी।
15: जी जी, हाँ हो रही है ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
16: आपसे भी बात करके अच्छा लगते हैं हम लोगों को, जितने भी लिस्टनर कॉल करते हैं तो सही बात करते हैं, और रही बात की आपकी आवाज़ों तो जितने लिस्टनर है सारे
15: जी जी
16: हाँ, कोई अच्छी नहीं है, साइंटिफिक नहीं है कि हमारे वजह से लोग कहता है, लेकिन आवाज ही आपको आकर्षित करता है सारे लिसनर को।
15: सब लोग बोलते हैं लोग की राम जी नाम रखे हैं, हम लोग भी बोलेंगे लोग, पर बहुत परफेक्ट रखे हैं लोग, ऐसे बोलता है।
16: परफेक्ट रखते हैं
15: जी, बोलता लोग की उनका जो चॉइस है ना परफेक्ट है। और आप नाश्ता करते हैं कि नहीं?
16: जी मैं नाश्ता करके निकलता हूँ, और यही बात की लोग और आपके रेडियो हम लोग पुराना लिस्टर है ना, कितने आरजे आए, कितने आरजे गए, और जहाँ हम लोग हैं वहीं तो स्थापित है, आगे कहाँ जाएंगे, हम लोग तो सिर्फ आवाजों को ढूंढते हैं, और एक रेडियो इंजन से ऐसा लगा हो गया है कि आरजे लोग हो या कृपा शंकर चाचा जी हैं, उनसे भी ज्यादा इतना प्यार मोहब्बत, एक मैंने समझिए फैमिली रिश्ता की तरह हम लोग रहते हैं, और कोई भी बात उठता है तो निसंकोच हम लोग रखते हैं, और उस बात को बहुत मनकारिकी से कृपा शंकर चाचा समझते हैं कि ठीक है लिसनर है, लिसनर के मन में क्या है नहीं है, हर चीज लिसनर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ हमको क्या करना है नहीं करना है, क्या सुनना है नहीं सुनना है, क्या चलाना है नहीं चलाना है, लेकिन आजकल जितनी भी प्रोग्राम है रेडियो इंजिन पे दर्शाई गई है और चली गई है, तो सारे प्रोग्राम एक से बढ़ के एक चलता है, इसलिए कि ये हम लोग का बिहार का माटी का सुगंध का एक ऐसा रेडियो स्टेशन है कि जिसे हम लोग का इतना लगाव है कि हम लोग को कहीं जाने का फील ही नहीं करता है।
15: जी जी, तहे दिल से शुक्रिया करती हूं जो आप लोग इतना सारा प्यार दिए, और वैसे
16: आप लोग भी यही कहेंगे कि जहाँ पे है ना रेडियो रिंगिंग में कोई भी आता है तो यहीं से सीख के जाता है, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि अपना मनोबल और अपना माइंड से कुछ ऐसा काम कीजिए कि आगे चल के आप लोगों को भी कुछ और भी करने के इनसे भी बेहतर मिले आप सभी को, समझे? नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो नवरात्रि के टाइम एक गाना सुनना चाहेंगे कि आज हम आपके नुआखिया को देख दिया, या लाखा सिंह फिंगर का कोई अच्छा सा उसमें माता की सॉन्ग हो तो वो शामिल कर लीजिए, लखा सिंह फिंगर का मैंने आसन दिए हैं आपको, यदि उनमें से भी हो तो एक अच्छा सा गाना निकालिएगा, और इस गाने में सबसे पहले रानी मुखर्जी जी हैं, भारती जी हैं, और तमाम जितने रेडियो लिसनर ये गाना सुनेंगे तो उन सभी को ये बाकी चौकी का गाना है, उन सभी को
15: भेज दीजिए। ओके जी, चलिए तो फिर इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं
16: जी। तो ठीक, एक बार और नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, पूरे रेडियो रिजन टीम को, तो प्यार भरा नमस्कार आप सभी से हम फिर विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप लोगों को।
15: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी बिल्कुल, बता दीजिए।
1: मर्द फिल्म का सुना दीजिए, मंग ओ मेरी माँ। से पहले आपको रहेगा और जितने भी लिसनर है रिमझिम।
0: जी जी, ये गाना जो बताए वो गा के बताइए मुझे।
1: जी हम नहीं अभी जाकर।
0: चलिए कोई बात नहीं है, वैसे नाम बता दीजिए अपना।
1: ज्योति कुमार बात कर रहे हैं, जिला भागलपुर।
0: चलिए चलिए, तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूँ तुझे।

0: भक्ति की शक्ति, आस्था की ज्योति और अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व है नवरात्रि और विजयादशमी।
1: इस पावन अवसर पर श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी, प्रदेश महासचिव जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार सह भावी प्रत्याशी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 मांझा ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, हर परिवार में सुख समृद्धि आए और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे का भाव और सशक्त हो।
1: ये विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशाओं का संचार करे तथा सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जय माता दी, शुभ दशहरा।
1: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
0: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
1: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
0: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा। शक्ति की उपासना, आस्था की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर आया है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
1: इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के जदयू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पटेल जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर परिवार खुशहाल रहे और गोपालगंज में आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
0: विजयादशमी का ये पावन पर्व हम सभी को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री प्रमोद कुमार पटेल जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
6: Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
7: तो दोस्तों दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
8: आपका भी स्वागत है
9: जी। क्या हाल चाल है?
8: ठीक है, अपना सुनाइए।
9: जी मेरा भी बढ़िया, बहुत लेट हो गया कॉल करने में।
8: आज तो 300 बार हो गई। आज तो इतनी परेशान हुआ कि हद से ज्यादा। लगा भी तो आवाज भी नहीं आ रहा है।
9: हाँ।
8: मैं टाइम देख रहा हूँ कि अब लेट हो रहा है, लगता है नहीं लगेगा। चलिए कोई नहीं, लग गया। और सुनाइए।
9: बढ़िया
8: बढ़िया तो नहीं लग रहा है। और उपवास है कि?
9: ना उपवास नहीं है।
8: कल भी थे, आज भी लगता है, आज भी है, लगता है। मन तो कर रहा है कि पूरे 9 दिन रहने को, देखते क्या हो रहा है।
9: अच्छा जी,
8: मेहनत के काम है, ठान लिए हैं, ठान लिए हैं। अब उन्हीं के हाथ में है, माता रानी के हाथ में।
9: जी जी,
8: उनके उनके भरोसे पे है। अभी बहुत दिन बाद में व्रत उठाए हैं, नहीं तो नहीं, मैं व्रत सब कुछ छोड़ दिया था।
9: ये बढ़िया। वैसे नवरात्रि के अवसर पे कौन सा गाना सुनिएगा?
8: नवरात्रि के अवसर पे तो गाना सुनना है नवरात्रि का ही। 2 मिनट समय दीजिए।
9: बिल्कुल।
8: 9 दिन कैसे रहू उपवास, पवन सिंह और मीनू अरोड़ा का।
9: अच्छा,
8: बहुत पुराना गाना है। 9 दिन में बूढ़ी कैसे रहू उपवास।
9: गाना तो बहुत ही अच्छा है,
8: यही सुना लीजिए। पुराना ही सॉन्ग है, ज्यादा करके आज इसीलिए किया हूँ कि कंपेयर नवरात्र के गाना सुन लूँ।
9: जी जी बिल्कुल, गाना तो बहुत ही अच्छा बताते हैं।
8: अच्छा तो बताते हैं,
9: और गाना भी बताए हैं और डेडिकेट भी करिए।
8: डेडिकेट आपको रहेगा और भारती जी को भी रहेगा। रमेश सीता नारायण जो भाई बहन जुड़ती है वो मुझे भी सुनाती है, तो हमें भी दायित्व बनता है उनको भी सुनाने के लिए।
9: जी जी बिल्कुल,
8: उन लोगों को भी डेडिकेट रहेगा, और अनिल भाई को भी रहेगा, प्रमोद भाई को भी रहेगा, सन्यासी रंजन बाबा के भी रहेगा, आज जितने माता रानी के भक्त है सबके लिए।
9: ओके जी,
8: तो फिर सुनाइए
9: जी। चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते, नमस्कार, मैं संजय कुमार साहब, मेरा नाम सिंह, पूर्वी चंपारण बिहार से बात कर रहे हैं।
1: जी नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: जी मेरा हाल खबर बल्कि बढ़िया है, आपका सुनाइए, आप कैसे हैं? आप पूरी इंजन संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
1: जी जी मैं भी बढ़िया हूँ और यहाँ पे सब कोई भी ठीक है।
0: चलिए, और सब ठीक ठाक?
1: जी जी बिल्कुल, अपना बताइए कि आप कैसे हैं?
0: जी मेरा भी एकदम बिल्कुल बढ़िया है। नवरात्रि का दिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं है विशेष नवरात्रि विशेष में।
1: जी जी आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी
0: शुभकामनाएं। जी है, आपको लगाए तो दे दीजिए संपूर्ण परिवार, कहिए ना कि जितना सुन रहे हैं सभी दोस्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे से। आज गाना सुना दीजिए।
1: बिल्कुल बता दीजिए।
0: चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, कुछ मिस याद कर सकते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: पहले आपको रेडियो इंजन संपूर्ण परिवार को आप दोस्त में हो गया सकाना से मोहम्मद साबिक जी, कमल से उत्तम कुमार जी, राम कुशवाहा जी, कृति बगान से अरुण कुमार, कला कोटम से नरेश सोहनी, दीपक ठाकरे, जुना सर राजमंदरिया, कुशवाहा, राम बाबू गंजी, शंकर कुशवाहा, पारस शर्मा, राजेंद्र यादव भांसी, संतलाल गौतम, मोहम्मद तलाल अंसारी मरवलिया से हमारे नाम से तमाम दोस्त को विशेष करके सुना दीजिए। शंकर प्रसाद शंभू जी, पारस नाथ कुशवाहा, पारस शर्मा, हमारे नाम तमाम दोस्त को सुनाते हुए अभी आपसे मिल लेंगे। नमस्ते, नमस्कार
1: जी। तो नमस्ते, आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
7: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो मैम, नमस्ते।
10: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
9: जी धन्यवाद मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
10: जी सुनील जी, कैसे हैं आप?
9: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं रेडियो रिमझिम का इंतजार करते हुए मैम।
10: जी जी
9: जी, अभी तो फोन ट्राई कर रहे थे, फोन भी लग गया, तो गाने के बोल है तू पागल पे नहीं आवारा, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम जो की लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
10: ओके सुनील जी, तो आपकी तरफ मौसम कैसा है उधर?
9: हमारे यहाँ तो मैम अभी तो धूप बहुत है कड़ाके की, और उसके अलावा फिर गर्मी है, और शाम सवेरे तो ठंडा मौसम है मैम।
10: जी जी, चलिए सुनील जी, तो फिर आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
9: जी धन्यवाद मैम।
10: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: नमस्ते भारती मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मैं एक घंटा फोन लगा लगा ही नहीं रहा।
1: अच्छा जी,
0: कल उस दिन जो शुक्रवार का गाना मैंने रिकॉर्ड किया तो कभी सुनते नहीं किए। नहीं बजा, कितने बार मैं सुना बजा ही नहीं किया है मेरा गाना। और लोगों का गाना बज सकता है, बज रहा था।
1: जी जी, तो अभी क्या है ना, अभी कॉल बचा हुआ है तो कहीं आज बजेगा।
0: और गाना सुना है वो ओम सिंह का गाना।
1: कौन सा?
0: ओम सिंह का गाना सुना है, देवी का भजन,
1: इनका देवी गीत। अच्छा, वैसे आप अपना नाम बता दीजिए।
0: मेरा नाम गोविंद कुमार, गोविंदा पंजाब से।
1: अच्छा, तो गोविंद जी पहली बार कॉल किए हैं हेलो माय फेस में?
0: पहली बार ने, मैं तो कितने बार फोन किया।
1: अच्छा जी, ऐसे लगता है कि आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: सोनी मैडम फिल्म रिकॉर्ड करा रहे थे ना।
1: ये तो लग रहा है आपसे पहली बार बात हो रही है मुझसे।
0: अच्छा, बोलो ना मैडम जी। लगा था उस दिन शुक्रवार का कहता था भारती मैम।
1: जी जी, और गाना जो आप बताए हो, गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले आपको और रेडियो रंजन सुनने वाला सभी श्रोताओं को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: जी,
1: तेरी सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
0: ओके मैम, थैंक यू।
1: वेलकम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं।

0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
2: जी नमस्ते, नमस्कार, आरती जी बोल रहे हैं?
1: नहीं,
2: नर्मा जी।
1: हाँ जी,
2: कितना दिनों से इसके बाद आज कॉल लगा हुआ है?
1: अच्छा जी,
2: बहुत दिनों के बाद। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक घंटा प्रयास कर रहे हैं।
1: कोई बात नहीं, अब लग गया ना।
2: बात करने के लिए बहुत बहुत परेशान होना पड़ता है, सब आपसे बात होता है।
1: अच्छा जी, वैसे नाम बता दीजिए अपना।
2: मेरा नाम बिंदेश कुमार शर्मा, जिन्ना मठ से बोल रहा हूँ, गोपालगंज जिला से।
1: जी जी, नाम क्या बताया?
2: बिंदेश कुमार।
1: अच्छा जी,
2: आप सब बताइए अपना, बहुत कैसा है आप?
1: जी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताइए कि आप ठीक है? खाना
2: ठीक हूँ। बहुत रेडियो रिंग बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा रेडियो रिंग से लगाव है। हम रेडियो से गाना सुनते हैं।
1: अच्छा जी,
2: मोबाइल से नहीं सुनते, हम रेडियो रखे हैं और रेडियो रिंग बहुत ढेर से सुनते हैं।
1: मतलब लगभग
2: हम लोग
1: सुनते आ गए।
2: हम लोग मठ से, जितना मठ से रहते हैं, हनुमान जी का बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मठ है। वहाँ पर 24 घंटा सीताराम का जाप चलता रहता है, वहाँ पर रहते हैं, 24 घंटा चलता है। जाना में 6 घंटा ड्यूटी देते हैं सीताराम में, उनको दूसरा काम नहीं, वही काम करते हैं। और हम लोग को खाना पीना और 4000 महीना सब कुछ वहाँ पे मिलता है।
1: बहुत
2: आते हैं और वहाँ पे भी जो सुनते हैं आपका, पसंद आता है। जब जब समय ड्यूटी का समय हो जाता है तो चले जाते हैं, बाकी समय रेडियो से लगा रहता है, रेडियो सुनते हैं। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम सब चलते हैं। आप लोग भी जब समय आते हैं, जब मैं कोई पहुँचे तो बहुत अच्छा लगता है। हमको भी उत्साहित होता है कि इस पर बात हो जाए, इस पर बात हो जाए, इसीलिए बार बार आदमी कॉल करता है कि एक बार तो बात हो जाए। बात होता है, गाना तो बहुत बढ़िया में बजते हैं, लोगों को फरमाइशी गाना बढ़िया में बजता है। आपका से तो बढ़िया लोगों की फरमाइश अच्छा लगता है। आत्मा को च्वाइस रहता है कि एक बार भारती जी हो चाहे नर्मदा जी हो, आप लोग का आवाज सुनने से एक बार मन करता है कि हमसे भी बात हो जाए ना। हफ्ते में एक बार जब गाना अपना बज जाए, एक बार बात हो जाए तो बेस्ट है, इसीलिए हम बहुत प्रयास करना है।
1: क्या है आपकी फरमाइश?
2: आज फरमाइश हमारा गाना यही बजा दीजिए। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तुम मेरी बाहों में। इस मूवी से है, किस फिल्म का हमको थोड़ा मालूम नहीं है। गाना अगर बढ़िया हो तो भी सुनवाना है, और भारतीय और रेडियो सुनने वाले हैं सब लोग के साथ। अब आप लोग के साथ गाना सुनना है, गा दीजिए।
1: जी जी बिल्कुल, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
2: नमस्कार
1: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: धन्यवाद मैम। मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर 1 से। हम
0: जी, कैसे हैं आप?
1: तो अच्छे हैं मनोरमा मैम, कैसी
0: हाँ जी
1: हैं आप?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: कब से ट्राई कर रहा था, बहुत मेहनत के बाद लगा है।
0: अच्छा जी,
1: कब से क्या क्या बोल रहे थे कि लग जाओ, लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा।
0: अच्छा जी, ये बात है।
1: तो करना पड़ता है मैम, मोबाइल को मेहनत करना पड़ता है बहुत, तब
0: जी,
1: लगता है कॉल।
0: चलिए इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उसके बारे में इतना कुछ बोला है।
1: आज हमको भोजपुरी सॉन्ग बज सकता है क्या?
0: जी जी बिल्कुल।
1: तब बज सकता है तो ये गाना है पवन सिंह का, जब से नैना लड़ल बात है आगे बढ़ल, तो
0: जी
1: ये गाना सुनना है।
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे। क्या ये गाना आप मुझे गा के बताइएगा?
1: उतना हमको नहीं आता है भोजपुरी गाना, ये अच्छा लगता है थोड़ा गाना, इसलिए एक बार गा देते हैं।
0: जी, बिल्कुल
1: जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, बस इतना ही।
0: जी, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
1: अरे हम लोग ने बहुत पहले अंताक्षरी में जीते हैं।
0: जी
1: हाँ गाना बताए हैं, सुनाना है पहले तो आपको और भारती मैम को, अंताक्षरी को, कमरान रशीद को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को, असलम भाई हैं,
0: जी चलिए
1: बहुत
0: तो
1: बहुत धन्यवाद आपको गाना सुनाने के लिए।
0: जी जी तो प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिकल जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76-66-66।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, स्वागत है।
14: ठीक
13: बाप बताए?
14: ठीक टाइम नहीं तो क्या करूँ, काम से करने के लिए करवा लिया, टाइम ना मिली।
13: जी जी, कितना बिजी हो बनी की टाइम के
14: आज पूरे मतलब बिजी रहे तो पड़ा था, क्या करूँ।
13: बात तो सही बात,
14: आज कौन दिन के बाद धराइल बनू बताए।
13: अच्छा जी,
14: तब क्या शुक्रवार बुधवार को भाग भी कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं।
13: सब का होता, खाना ना होगा?
14: हाँ, खाना ना तो हो गया।
13: सब का बात ही सब नहीं सर।
14: और सब बताएं, गोपालगंज की मौसम कैसा है?
13: गोपालगंज की मौसम ठीक बा, हल्का धूप निकल रहा
14: है तो बहुत तेज धूप बोल रहा
13: है। नाम बता दिया?
14: हमारा नाम गणेश कुमार, प्रणाम कर रहे हैं, दूर छुके भोर पर गए प्रणाम करे।
13: बाप रे, हम दिन हाथ दूर
14: दिन के बाद फरमाइश आज के मस्ती मस्ती सॉन्ग बजा दी। सुन झाजी भी सुन ले मनोरमा दीदी।
13: हाँ जी,
14: मस्ती मस्ती वाला सॉन्ग बजा
13: दी।
14: गाना सबसे पहले रविना सुनवा, भाजी दीदी के सुनवा, रानी जी गानी के सुनवा के बाद, और रेशमा जी को सुनवा के बाद, राघव जी के सुनवा के बाद, और करिश्मा जी को सुनवा के बाद, और हमारे गाँव के मनीष भैया को सुनवा के बाद, और पूरा रेडियो रेंज को सब और को सुनवा दें।
13: जी बिल्कुल, चली तरफ गाना हम प्ले करते नहीं।
14: ठीक बा, नमस्ते।
13: नमस्ते, सुनत रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते
1: जी। जी नमस्ते
0: जी, हमें अपने मनपसंद गाने बजवाने हैं।
1: जी जी बिल्कुल बजवाएंगे। पहले नाम बता दीजिए अपना।
0: जी मैम, मेरा नाम खुशी मिश्रा है।
1: खुशी?
0: हाँ।
1: वो कहाँ से बोल रही है खुशी जी आप?
0: जी हम मैम लखपतिया मऊ से बोल रहे हैं, मेरे पानी पर से।
1: अच्छा, तो खुशी जी आप रेडियो रिमझिम में पहली बार कॉल की है?
0: हाँ जी, पहली बार कॉल की है।
1: अच्छा जी, तो खुशी जी कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: जी मैम हमको गाना सुनना है 1920 फिल्म का गाना है ए दिल ठहर जा।
1: ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे दो लाइन?
0: ए दिल ठहर जा, जीने की कोई एक बजा ढूंढ ले, डर से हर कर न तू दिल की फिक्र।
1: ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: यस मैम, मैं अपनी बहनों को सुनाना चाहती हूँ और सारे रेडियो रिमझिम जितने भी सुने उनको।
1: खुशी जी, तो आप ये रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं? रेडियो के माध्यम से कि मोबाइल ऐप के जरिए?
0: मोबाइल से मैम सुनते हैं।
1: अच्छा जी, कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू मैम गाना बजाने।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम।

0: बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
12: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello.
13: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो मैम, नमस्ते।
15: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
14: जी धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
15: जी सुनील जी, कैसे हैं आप?
14: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं रेडियो रिमझिम का इंतजार करते हुए मैम।
15: जी जी
14: जी, अभी तो फोन ट्राई कर रहे थे, फोन बिल लग गया, तो गाने के बोल है तू पागल पे नहीं आवारा, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम जो की लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
15: ओके सुनील जी, तो आपकी तरफ मौसम कैसा है अगर?
14: हमारे यहाँ तो मैम अभी तो धूप बहुत है कड़ाके की, और उसके अलावा तेज गर्मी है, और शाम सवेरे तो ठंडा मौसम है मैम।
15: जी जी, चलिए सुनील जी, तो फिर आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
14: जी धन्यवाद मैम।
15: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्ते भारती मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मैं एक घंटा फोन लगा लग ही नहीं रहा।
1: अच्छा जी,
0: कल उस दिन जो शुक्रवार का गाना मैंने रिकॉर्ड किया तो कभी सुनते नहीं किए। नहीं बजा, कितने बार मैं सुना बजा ही नहीं किया है मेरा गाना, और लोगों का गाना बज सकता है, बज रहा था।
1: जी जी, तो अभी क्या है ना, अभी कॉल बचा हुआ है तो कहीं आज बजेगा।
0: और गाना सुना है वो ओम सिंह का गाना।
1: कौन सा?
0: ओम सिंह का गाना सुना है, देवी का भजन,
1: इनका देवी गीत। अच्छा, वैसे आप अपना नाम बता दीजिए।
0: मेरा नाम गोविंद कुमार, जलिंदर पंजाब से।
1: अच्छा, तो गोविंद जी पहली बार कॉल किए हैं हेलो मैसेज में?
0: पहली बार मैं तो कितने बार फोन किया।
1: अच्छा जी, ऐसे लगता है कि आपसे पहली बार बात हो रही
0: है। शनी मैडम खेले रिकॉर्ड करा रहे थे ना।
1: जी, तो लग रहा है आपसे पहली बार बात हो रही है मुझसे।
0: अच्छा, मैडम जी बताया उस दिन शुक्रवार का कहता था भारती मैम।
1: जी जी, और गाना जो आप बताए हो, गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले आपको और रेडियो रंजन सुनने वाला सभी श्रोताओं को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: जी,
1: तेरी सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
0: ओके।

0: जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
5: Hello. जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
6: तो दोस्तों ब्रेक के बाद

0: आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो जी, सलाम मरहबा।
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत हो रहा सुनना
1: जी। बिल्कुल वाली
2: जी, बिल्कुल ठीक बानी, रुआ बताएं
1: जी। हम अच्छा बानी
2: जी,
1: बहुत मेहनत करे मैम आज।
2: अच्छा जी, कुछ दिन से रुआ पीछे छूट जाता नहीं।
1: पीछे ना मैम, रुआ लोग बहुत दर्द करता नहीं, ठीक बा। हम एक से निकले वाला बानी।
2: ना ना, ऐसा मत करी, क्या हो गई रुआ?
1: बहुत खराब लगा मैम, सोच सकता नहीं रुआ। रुआ तो शिकायत है,
2: अच्छा क्या हो गई रुआ, जान सकता नहीं हम।
1: रुआ तो जानते वाली भाती मैम से दूर दूर रेकॉर्ड अभी तक बाजन
2: जी जी तेरा और गाना बाद दे कहा ना कि बहुत सारा कॉल आई रहा तो भारी भारी सबके बजावल जाला।
1: मैम हम आपके बता दें कि अच्छा वो कहीं भारती मैम की चला दे, लेकिन रखी इतना दिन हो गया चले नहीं की निकल जाये शो से। कहा की रवल
2: ना ना, ऐसा मत करी रवल, शो से निकल जाए तो अच्छा ना लगे
1: जी। आप लोग के मतलब ऐसी समझे नहीं, जैसे की जिम्मेदारी आप लोग के, लेकिन हमने तो मतलब मेरे पास सुने के चाहिए।
2: आज जी जी, तो फरमाइश बता दी हम।
1: मैम तो आज हम रखे जमाना है दीवाना फिल्म से गाना सुना है, और गाना के बोल अपने मन से बजा दे।
2: ना ना रुआ, इतना मुश्किल से कहिए वानी तो रुआ बताती तो बहुत ही अच्छा लगे।
1: तो बार मैम सही कहता नहीं, आज बहुत मुश्किल से लगा
2: जी। तो बता दी अपने पसंद से
1: जी। मैम गाना पा गाना के बोल बा जमाने को अब तक नहीं है बता, अगर हो गई हो हमसे कोई खता।
2: जी एक बार और बता दी।
1: जमाने को अब तक नहीं है पता, अगर हो गई हमसे कोई खता, क्या होगा क्या होगा।
2: जी जी, कभी तरह और गाना हम प्ले करता नहीं
1: जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते।
0: अरे बाल लेट रिकॉर्डिंग होता
1: जी। जी लेट हो गया।
0: हम था से बोल रहे हैं रामाजी प्रसाद
1: जी। जी कैसन बानी?
0: ठीक बानी। अच्छा बानी।
1: तब खाना ना भइल?
0: हाँ खाना ना हो गल बा, सब हो गल बा। बैठो मैम दुकान पर, बाजार को कहनी तो कहनी इधर नंबर लगाए 12:30 में, तो जखनिया की अभी जोर बताओ तो जखनिया जब नंबर ना लगे तब हम ऐसी करते रहो।
1: चलिए
0: गाना सुना दी।
1: हाँ, बता दी।
0: आजा रे दिलवर आजा, दिल की प्यास बुझा जा।
1: जी जी, ये गाना रो गा के बता सकते हैं हमके?
0: हम थोड़ा एक लाइन लिख लाए मनी, आजा रे दिलवर आजा, दिल की प्यास बुझा जा।
1: जी जी, गाना तो बहुत ही अच्छा बा। और गाना के ऊपर सुनाए के लिए चाहता नहीं?
0: सब कुछ सुने, रेडियो रिमझिम जितना सुनता सब कुछ सुन।
1: जी जी, चलिए तो फिर प्ले करते हैं ना गाना।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: मैं पिक योर फोन अप।
1: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029494911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 91.4 FM।

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रउरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा शोटे वर्जा भार। रवा सभी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुंचे के कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथ और दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लफ्ट उठावल जाओ सोटी बिरजा भार के।
1: अब जू आपनी भजन गौले अब तले आसन लगल बने देखी महल से रानी निकलत आलो लौड़ी निकलत आड़ी देखी पानी भरे खातिर कैसे। अरे बाप रे बाप हम का देखतनी इतना सुंदर जोगी आज जाके बैठल बने हमार तो मन एने उन्हें हो गई बा आज चनी पहले हम ही चल के पूछ लें।

0: बेकार बा।
1: हाँ
0: ऐसे कि हमनी के इज्जत बा नहीं।
1: हाँ
0: केहू के दुआरी पर जाता नहीं सहन तो केहू दूर दूर आवता।
1: हाँ
0: ऐसे बढ़िया बा कि गांव छोड़ के तीन चार गांव फैले चलल जा चाहे कोई कुछ और दूर चल चल रहा तीन चार कोस पर।
1: हाँ
0: रंजीत भाई अब छोड़ दो ना सब बड़ा सनमत ला रहे सन।
1: हाँ हाँ
0: अब तो चल गए ना सर दूसरे गांव में।
1: हाँ
0: तले कुकुरन के देखला होखम लो नी।
1: हाँ
0: केहू के घरे कोनो शादी बियाह छठी छिला चाहे कहीं यज्ञ पड़ेला तो कुछ दूर पहले ही सब महक जाले सन।
1: हाँ
0: बस एगो गांव में गइले से बस तनी ओकनी के महक आइल।
1: हाँ
0: तई तीनू राय कने सके मानव दूर ना चलल जाय यही जा देख ना होई गांव में बुझा तो केहू के यहाँ यज्ञ होता।
1: हाँ
0: चाहे जरूर कोनो बात बात तबे इतना
1: महकता गमकता।
0: हाँ महकता
1: भोजन ओकनी का गमकता।
0: हाँ हाँ वे बात।
1: हाँ हाँ
0: और ते बाबू में से एगो पातर कुकुर है।
1: हाँ
0: गइल।
1: हाँ
0: ई दोनों कहने से सुन ते ही सबसे पातर बड़े ते ही जो पहले।
1: हाँ
0: पता लगा आओ कि कहा व्यवस्था होता अब तई गइल पतरका ऐठत।
1: हाँ हाँ पतरका कुकुरा।
0: हाँ गइल कुकुरा पतरका ऐठत मैठत तो जे देखत का।
1: हाँ
0: अब एगो यज्ञ होत रहे।
1: हाँ हाँ
0: और यज्ञ में अब ये चूल्हा मैंने धरावल जात रहे।
1: हाँ
0: आने भोजन बनावे खातिर।
1: हाँ
0: ठीक नु।
1: हाँ
0: तले जाता ई पतरका कुकुरा।
1: हाँ धौधी आइले।
0: हाँ धौधी आइले। हाँ जाता अब लो लीप पोत के चिकन कैले रहे लो आ अब ये लकड़ी ओय में
1: जरावे जात रहे।
0: हाँ धरा दले रहे लो।
1: हाँ
0: तले तई जाता बस तड़ देने एक राउंड घूम जाता।
1: हाँ
0: जब एक राउंड घूमता तले लोग जा जा हटत नहीं खे। अब वो जुकिया ले चल जाता जहाँ मैंने चूल्हवा जरावल जात रहे। तोड़ देना जरते लुआठी खींच के जब दूर दूर औले पर ना भगल बस घींच के तारा तो चार पांच लुआठी।
1: हाँ वो जो चैली चीर के धर रहे के चैलिया में से उठा के लागल मारे।
0: हाँ हाँ भाई वह बते तो हम कहते नहीं कि तारा तोड़ चार पांच लुआठी ने ओकरा ऊपर जब गिरता तब उन से कोई कोई कैले आवता। आवता तो ये दोनों कहते ना से हाँ ठीक पता लगो ले बा। पता लगो ले भाई का हरी का भैल तो बा मार दे। अरे तोहनी के जा बेकारे नु बैठल बड़ा जा। अरे एने जात ना कह आ एने तले गर्मे गरम नु हमरा के भेटात ना कह।
1: अच्छा घर में गरम भेटाइल बा।
0: हां घर में गरम भेटात ना कह भैवरी तहनियो के जा सते एगो तनियो में लंगड़ा रहे। ऊ जा त कहत रे हम त तनी खैले से तनी दुबरा गइल बनी माने ढंग से मिली तौरी मोटा जेती बाकी तनी हम ही के जाए दसन तब ते बाद में जई अभी जाता लंगड़ा लंगड़ते जाता देखो ता त कहत बा। हाँ तो सही हमार संगती बा कहलस यो कि बाप रे बाप ना जात ना कहो आईने गरमे गरमे भेटात ना कहो तले में का हो गई रहे। अब चूल्हा में आगी जरत रहे धद धद लोग कराही धद दल रहे आ कराही में चार पांच बाल्टी पानी डाल दल रहे आ एकदम पानी खौलत रहे। तले तो ई जाता अब इहो जाके दुई राउंड घूम देता। जब दुई राउंड घूमता तले में के भंडारी देखत कहत जा जा सब जियान कइले दूर रे दूर रे दूर रे
1: मार मार मार मार
0: अभी दूर दूर नहीं के बुझ। बस ओई में पावना डाल के उ करहिया में हिलावत रहले पनिया बस ओई में से संद घींच के आ दस बार पावना नु पीठी पर जमा होता है। अब तो उन्हें से कोई कोई करते भाग के आवता
1: देह जर गए सर
0: देह साफ होकर जर गए तभी पूछल से का तोरा भइल रे अतबा भाई ना। अरे हेकरा के तो दू तीन बेर नु मिलल हो घर में घर में हमारा के पांच सात हाली घर में घर में।
1: हां ढेर गरम ओहु से गरम
0: तोरो से गरम हमरा भेटा गेल है देख ना। तब जौन मोटकार है कुकुरा घोघैले बा उ कहलस रे तब तो तहनी से सगरिन से बरियार हम ही बानी
1: हमरा और भेटाई
0: हम तो जान तो तनी और खाए खूब। अब ई जाता तले मान ली खाना ओना बन गइल आ ले आके वो कोठरी में रखत रहे पारा पारी लोग रखत रहे तो तनी देह के मोट रहे डेराए नाई के भाई तनी हम देहियो के तक ओजनदार बानी। अब ई सन दे जाता हो जा कोठरी में ढुक जाता के से पूछत उछत नहीं खे आ टन देना कोठरी में ढुक जाता जहाँ खाना ओना रखल रहे तले लोग देख लल कहता जा जा दूर दूर दूर सब जियान कइले सब हंड भंड मार मार मार मार रे मारते एक आदमी कहले ना ए तर मत मारलो नी ई परिक गइल माने सन भीतर से ना बहरी से केवाड़ी के सीट किली लगा दलो नी आ एक जाने भीतरी ढूक आ इतना ना एकरा के पीटलो नी सारे के कि फिर एकरा याद रही ते केहू के जग पर रोशन में ना जाई। अब ते बाबू आउ त भीतरी ढूक गई रहे आ बहरी से सीट किली बन क के आए के जाने एगो लबदा लेके एगो पैना लेके आ ढूक के घर में दे पिटाई दे पिटाई दे पिटाई इतना ना पिटाई ओकरा के दोहलो कि माने होश में ना रह गई रहे कोनो तरह की घिकुरियाले कुकियाते उकियाते आवत ए दुनुन के लगे।
1: हाँ।
0: तई कहत हाँ एक भेटाइल हुई पूछल से का

0: तोरा का भइल त दौड़बा मानत नहीं। अरे तोहनी के लोग गर्मे गर्मे में खियाल हो आ हमरा के लोग कोठरी में बन को के घेर घेर के खियावत रहल
1: घेर घेर के खियातला। देखिए भैया अब कहानी पर ध्यान दी। हाँ बोजू बिरजाभार से लौड़ी का कहता लो
0: का कहता लो

0: से गई बड़ी लौड़ी आ जाके रानी साहब से कहत रही, रानी साहब अरे बाप रे बाप इतना सुंदर जोगी आई बहो, अरे खूबसूरत बा, अरे ओकरा हजूर से ओकर सूरत इतना दगदग जरता आ तन जाकर और भेंट करी देखी ना, तब का कहत रही,
1: का कहत रही, ठीक बा अब तो लौड़ी गई बिया रानी जी के बुलावे खातिर, तब तक हम ये आसन लगा के बैठी, थोड़ा अबेरे हो गई बा।
0: बाजू आओ तड़ी रानी आ देखा तड़ी तो वही जो मूर्छा के गिर जा तड़ी, कहा तड़ी की बा अरे ऐसा सूरत तो हम कबो ना देख रही हैं,

0: देखि हमार कोनो जोर जबरदस्ती नै बा आना कोनो बात बा रोवा हमसे बियाह ना करे करुवा जा सकिले
1: हम जा
0: हमार कोनो जोर जुलुम नै बा
1: हम जा तनी
0: जा तनी
1: हां
0: ए बाबा देखि ना माने
1: थोर है झोरी हमार
0: सही है
1: अब झोरी तोरे इतना आदमी ना छू सकेला

0: अच्छा ते हमार गुदरी ढोबे।
1: हाय बाबा
0: ते हमार जोग ना रहे देबे बुझाता।
1: ना बाबा हमरा के लिया ना चली।
0: हट हम तोरा के ना लिया के जाएं ना अपन गुदरी ना हाई कमंडल कुछ ना तोरा के छुए दे ते हमरा के जाए दे
1: ना हमरा
0: सोरनपुर के तैयारी कैले बनी
1: त हमरा के ना लिया जाए त पिंटू बाबा के लिया ली।
0: हट हम केहू के ना लिया के जा सकिले अकेले घर से चलल बानी अकेले ही जा सकिले हम जेकरा खाती जा रहल बानी ओही के लिया के घरे जाए तहनी के लिया के ना जा सकिले ना तहनी से शादी ब्याह कर सकिले।
1: सही है साफ ना करे त जाई आप देखी वहां से जमनी रानी अपने गढ़ के अंदर गईली आ वहां से बिरजा भार आप जातरन अपने गुरु के सुमिरतन कौन तरह से

0: पिरजा भार।
1: हाँ ये गुरु।
0: चेला
1: हाँ,
0: अब तू कहे के हमके बुलावला हुआ।
1: हे गुरु, अब एक बात बताई कि अब हम कौन शहर में जाई।
0: जमुनागढ़ से लौट आई।
1: हाँ, जमुनागढ़ से चल आई।
0: ऊजा जमुनी नाव के एक ठुरहली तरह से मुलाकात भइल कि ना
1: भइल।
0: अब फेन हमरा के बुला लला पूछे खातिर।
1: हाँ,
0: कौनो बात नहीं खे। देखा चेला, अब तोहरो जोग पूरा हो निचाइल बा।
1: का हमार जोग पूरा हो निचाइल बा?
0: हाँ।
1: कैसे?
0: अब देखा एक रे बात।
1: हाँ,
0: तू कहाँ जाइबा?
1: हाँ,
0: सोरठपुर जाइबा।
1: का
0: सोरठपुर जाइबा?
1: अरे ए गुरु, अब एक रे बात हमार सोरठपुर आ गई।
0: हाँ हो।
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: हाँ,
0: सोरठपुर तू कैसे जा सकेला?
1: कैसे जाए हे गुरु?
0: सोरठपुर जाए खातिर बड़ा कठिनाई बा।
1: अच्छा,
0: सोरठपुर राज में तू कैसे ढुकबा?
1: कैसे जाए?
0: तहरा पता नहीं खे। एह उम्र में जेब।
1: हाँ,
0: तो ऊजा तमाम पहरा लगल बा।
1: हाँ,
0: तहरा के ऊजा सिपाही दरमान ऊजा के मार दी है सोन।
1: अच्छा,
0: ओ राजा दक्ष के ये ऐलान बा।
1: हाँ,
0: कि हमरे राज के अंदर केहू नौजवान ना आ सकेला।
1: हाँ,
0: केहू आई तब पुरनिया आई।
1: अच्छा,
0: ऐसे कि राजा दक्ष के लड़की जौन सोरठी बिया वो नौजवान बिया। बहुत कड़ा पहरा लगल बा।
1: अच्छा,
0: तू कौने तरह जेबा? तू 80 बरिस के बूढ़ बन जा। बूढ़ बन के जा, हो सकेला कि तहार काम सफलता हो जाए।
1: ए गुरु, अबे हम कैसे बूढ़ बन जाई? कैसे का बनब? तू खाली हमका राही बता दो, तहार सहारा लेके हम निकल जातनी सूरतपुर।
0: बता दो नितारा के
1: हम
0: तहार मर्जी जैसन तू कर।
1: ठीक बा, अब हम रास्ता धरतनी सूरतपुर के। देखी कितना दूर और सूरतपुर बा, वह रास्ता धैले हम निकल जाए। अरे धैले डगरिया।

अब देखी एक जून के कहानी रह दी। अब उन्हें चली सूरतपुर में जो राजा दक्ष बने। जब सोची 12 साल के वास्ता में भाई बाड़ी राजा सोचले बने कि बाप रे बाप, हो सकेला कि हमरे सोठी के उधार ले जाई। ऐसे इतना बड़ा कड़ा शासन कर दले बने कि उनके सबसे बड़ा पहरादार जौन शंभू हत्यारा बा वो कि अपने सीमा पर लगा दले बने कि देख शंभू हत्यारा, अगर केहू भी 80 बरस से ज्यादा उम्र के आई तो वो के आवे दी है, ना तक कम उम्र के आई तो के जिंदा मत छोड़ी है, वही जो मार दी है। चारों ओर पहरा डलवा दले बने सूरतपुर में। आज देख ली एगो बात और पहले बता देता नहीं कि जौन सूरतपुर बा राजा दक्ष के जौन राज बा आज जौन फुलवारी बा वहाँ यह प्रतिज्ञा बा कि रब दुर्जा भा रही हैं तबे उस सूरतपुर के सारा बाग बगीचा हरा भरा हुई, ना तो सारा बाग बगीचा सूखल बा। अबे एगो निशानी बा ओकरा बावजूद आप सबसे बता देता नहीं कि जौन हेमंती रहली तौन जौन गई रहली नेवता में, हेमंती के नेवता में जौन सोठी रहली गई रहली अब वो जो वादा करके आई रहली, आई बिरजा भार कहले रहलन कि हम जरूर आए तहरे लगे, तारा के जरूर लेके आए, वही से इंतजार करत सोठी के। इतना दिन हो गई बा, अब देखी अब बिरजा भार यहाँ से चल तरह कहाँ जई हैं, शंभू हत्यारा के पास जई हैं, लेकिन ए तरह के ना जई हैं। अब उन्हें जौन सोठी बाड़ी तन का कैले बड़ी, इनका आगम मिल गई बा कि आज बिरजा भार आ रहा बड़न, लेकिन अहे कैसे हमार पिताजी के इतना सख्त आर्डर बा कि जिंदा दफना दी हैं। ऐसे बढ़िया बा कि हम अपन आदमी देव जौन की जाके सीमा पर पहरा करत रही, जब बिरजा भार उन्हें से आई हैं त जाके झुकी हैं। आदमी भेजे बड़ी उपकारी नाव के आओ के दू गो गुटका दले बड़ी, एगो गुटका खैले से वो आदमी 80 बरस के पुरनिया हो जाई आ एगो गुटका खैले से वो फिर नौजवान हो जाई। देखी वहाँ से अब यहाँ बिरजा भार अब जा रहा बने राही में कौने तरह से आर्य धैले डगरिया।

आप देखिए कहाँ पहुंचल बने, जहाँ शंभू हत्यारा बा, वो जो बहुत कड़ा शासन बा, ओकरे कुछ दूर आगे उनके आदमी जौन उपकारी नाव के बा, उ खड़ा बा कि जब जोगी होने से आई है तो हम सारा बात जानते बानी, उनके ही गुटका खिया दे, एगो गुटका खिया दे तो 80 बरस के पुरनिया हो जाई है, चाम झूल जाई। आई है राजा दक्ष के ऐलानो बा कि 80 बरस के जौन बूढ़ रही उहे सोरपुर शहर में आई, अथवा कोनो भी नौजवान होता वो तो के सीधे शंभू हत्यारा काट देता। अब उपकारी नाव के आदमी जब देखले बा इनके आवत, तब पहले ही दौड़ के आई बा, आके कहता का कहता का कहता, अरे बाबा सही सही भेदवे बाबा हमरा

0: प्रभावित किसानों के बीच 112 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि टीबीटी के माध्यम से अंतरित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगता के मानदंड को 40% किया, अब जन्म के बाद से ही मिलेगा दिव्यांगता पेंशन। कैबिनेट ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने को दी मंजूरी। और वैशाली नौहासे में जिला प्रशासन ने राघोपुर के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित किसानों के बीच फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का वितरण किया। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री चौधरी ने 2,48,000 से अधिक बाढ़ प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 112,52,00,000 रुपए की अनुदान राशि टीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि इनपुट अनुदान से वंचित किसानों को दुर्गा पूजा के बाद सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
1: दुर्गा पूजा के बाद एक बार और एक सप्ताह इस कार्यक्रम को चलाकर जो लोग छूट गए हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर इसको ये एकदम इंश्योर करना है कि हर हालत में कोई भी व्यक्ति जिनके खेतों तक पानी पहुंचा और उसके चलते उनके फसल नष्ट हो गया है, तो हर हालत में उनको किसी इनपुट मिले, इसको सुनिश्चित करना है।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगता के मानदंड को 40% कर दिया है। पहले यह मानदंड 80% था। साथ ही दिव्यांगता पेंशन अब जन्म के बाद से ही मिलेगा। पहले न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। और पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। जन्म से उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी, करीब करीब 27,00,000 दिव्यांग जन इस पेंशन के कार्यक्रम में लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जारी रखने को स्वीकृति दी है।
2: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंशन।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस देने को मंजूर रीति है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने केंद्र सरकार से चालू खरीफ विपणन मौसम के तहत शेष अधिप्राप्त धान की मिलिंग के लिए 15 दिनों का अवधि विस्तार देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। श्री कामैत ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने अवधि विस्तार देने का आश्वासन दिया है। वैशाली नौ हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि इस मामले में राघोपुर के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि नौ परिचालन की निगरानी की जिन पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही नौ मालिक और नौ परिचालन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
3: जिनकी नाव है और जो परिचालन कर रहे थे निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी जो पदाधिकारी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष की मूल रूप से जिम्मेदारी है कि वो अपने तंत्र के माध्यम से और स्वयं पर्यवेक्षण करके इन चीजों को रोकेंगे। सूचना है कि इस बोट का परिचालन पहले भी किया जा रहा था, तो ये चूक है और इसके लिए कार्रवाई होगी।
0: इधर केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने आज हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। श्री पासवान ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
4: इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि लापरवाही अगर हुई है कहीं पे और किसी भी स्तर पे, भले वो प्रशासनिक स्तर पे हो, जिस भी स्तर पर जो लापरवाही हुई है, मासूम बच्चों की मौत के गुनहगारों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी और यकीनन ये विषय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी है, ये जानकारी वहां तक दी जाएगी और जो भी दोषी होगा बख्शा किसी को नहीं जाएगा।
0: उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इधर स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने NMCH जाकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी के समुचित इलाज के निर्देश दिए।
5: जिला प्रशासन और सिविल सर्जन सब जैसे ही घटना खबर मिली सब लगे हुए थे, लेकिन फिर भी इसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 6 लोगों को इस अस्पताल NMCH में लाया गया एम्बुलेंस से कल से। यहाँ पे 2 बच्चे पीकू में भर्ती हैं अभी, जो अभी ठीक है, खतरे से बाहर हैं। 1 बच्चे पीडियाट्रिक वार्ड में है, वो भी स्टेबल है। स्वास्थ्य विभाग निरंतर लगा है।
0: गौरतलब है कि कल रात वैशाली जिले के राघोपुर दियारा क्षेत्र में रामपुर श्यामचंद गांव के पास गंगा नदी में एक नाव पलट गई थी। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को

0: आइए सुनते हैं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी परिदृश्य पर आधारित एक रिपोर्ट।
1: कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनके यादव, राष्ट्रीय जनता दल समर्थित नीतीश कुमार, जन स्वराज समर्थित रजनीश रंजन और कांग्रेस समर्थित मनोज कुमार जायसवाल समेत कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एनके यादव वर्ष 2014 से इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दो चुनावों में जीत दर्ज की है। वर्ष 2020 के चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल समर्थित नीतीश कुमार को 6901 मतों से पराजित किया था। इस बार जन स्वराज समर्थित रजनीश रंजन की उम्मीदवारी और विपक्षी दलों के अलग अलग प्रत्याशी होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चुनाव में मतों का बंटवारा भी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर और बांका जिले तक फैले कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,34,072 मतदाता है। इनमें 1,01,056 पुरुष, 33,013 महिला और 3 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। मतदान के लिए 181 केंद्र बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन।
0: गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के अवसर पर आयोजित होने वाली मोटरसाइकिल रैली के लिए बिहार की टीम आज पटना से रवाना हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिल दल को रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद थे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बक्सर परिसदन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं की प्रगति, लाभों के चयन, पौधारोपण और सामाजिक अंकेक्षण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कुमार ने जिले में विभागीय कार्यों के निष्पादन पर संतोष जताया।
2: जहाँ जहाँ कुछ डायरेक्शन देना था डायरेक्शन दिया, मिला जुला के काम सब अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। और जो सरकार की चिंता है, सरकार जो करना चाहती है, उस दिशा में हमारे यहाँ के अधिकारी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे जीविका का काम हो, चाहे जी राम जी योजना का काम है, सब में बेहतर और अच्छा काम हो रहा है।
0: रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पटना और नई दिल्ली के बीच विशेष वंदे भारत ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया है। ट्रेन का परिचालन नई दिल्ली से 16 और 18 अक्टूबर को होगा। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि देवी का यह स्वरूप कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण माँ दुर्गा के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह वापस लौट गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉनसून सीजन में सामान्य से कम बारिश हुई है, साथ ही बारिश का वितरण भी असामान्य रहा। इधर विभाग ने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों के मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। बगहा की एक अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी रंजीत कुमार को 10 वर्ष कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही मृतका की सास और ससुर को भी 3-3 साल कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पटना के फतुहा में लूट की योजना बना रहे एक अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से अपराधी घायल हो गया, उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मुंगेर जिले के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर सीआईबी की टीम ने 2 नाबालिग बहनों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। दोनों बच्चियां पिछले 3 दिनों से लापता थीं। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप और गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मधुबनी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 1 शराब तस्कर और 2 शराबियों को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के तहत मद्य निषेध कानून के उल्लंघन के आरोप में 27 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने बरबीघा थाना में पदस्थापित दारोगा रिंकू रंजन और कैलाश पासवान को कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पश्चिम चंपारण जिले जिले के सिमरा कदमहवा में बिहार राज्य उड़ाव जनजाति समुदाय का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित किसानों के बीच 112 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगता के मानदंड को 40% किया, अब जन्म के बाद से ही मिलेगा दिव्यांगता पेंशन। कैबिनेट ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने को दी मंजूरी। और वैशाली नौहासे में जिला प्रशासन ने राघोपुर के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:47 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बीरजभार हो
1: तोहरा नाम बीरजभार हो
0: हाँ
1: हमरा के ना चिन्हत हो के हम के हैं
0: हम लेखी जानत
1: हम ही उपकारी हैं
0: अच्छा
1: माना उपकारी हवे
0: अच्छा
1: है दू ठो गुटका ले बनी
0: अच्छा
1: बाबा
0: हाँ
1: जब ओजा सरुआ चलल बनी नू
0: हाँ
1: तबे सोरठी के मालूम हो गइल बा कि बीरजभार आ रहल बा
0: अच्छा
1: लेकिन एजा के ऐलान बा
0: हाँ
1: कि एजा के नौजवान ना जा सकेला
0: हाँ
1: जब के हो जाई तो 80 बरस के पुरनिया बन के जाई
0: हाँ
1: यही से सोरठी हमरा के है दू गो गुटका देली है आ कहली है कि अगर जोगी बीरजभार भेटा जाई हैं तो है एगो गुटका खिया दी हो
0: हाँ
1: वो 80 बरिस के बाल 80 बरिस के बूढ़ हो जाई हैं
0: हाँ
1: तबे आके सोरठपुर में आ सकेले
0: हाँ
1: ना तो नौजवान अगर बन के आई हैं तो जौन शंभु हत्यारा बा उ जान से खत्म कर दे
0: अच्छा
1: तो लो है गुटका है खा ल तू
0: ठीक बा
1: तू 80 बरिस के पुरनियानी बूढ़ बन जा
0: हाँ बन जा तनी हम बूढ़
2: अरे बाप अरे बाप अरे बाप हे बाप हे बाबू
0: कहा सही तुम्हार दे 80 बरस के हो गए दादा चाम चाम सब झूल गए दादा
2: अरे माटी
0: है दरिया कौन तरह डोला ते दादा
2: माटी फूल था ये हमारा बाबू
0: बाप रे बाप
2: ना देखो ना
0: हाँ
2: गोड़ से ना चल ले जाता आना यहाँ फिर से लौकटे बा हमरा जाए कबा ए सी के लोग तनी हुन कदा से दो तीन क्यों बात करे कबा
0: राजा दक्ष के बगीचा देखे जाइब का
2: हाँ हाँ
0: ओ सही बात बा न तो है पुरानी आदमी का कर जाए सोरठी के लगे है दादा है पगलाई लेखे न बुढ़वा अच्छा एगो कार बा और तू जा सके लो देखा हुआ गेट जम लोग का ना
2: अच्छा
0: वह सोरठपुर का गेट है
2: हाँ
0: ध्यान बड़ा
2: हाँ हाँ देखा था नहीं
0: ऐसा राज कौनो ना आई बा
2: अरे बाप
0: रे हकड़ा अरे यारी कौने तरह से कितना कौने तरह से सजावल बा इस सोरठपुर राज के
2: हर सब बिजली बत्ती हुई जा जलाता
0: सब
2: हाउ जितना हाउ बारी बगीचा हम मकान
0: सारा फुलवारी हो
2: होठी हमारी सब
0: सब सोरठपुर के हा
2: ओई जैसे जाई हो जैसे
0: आओ करे आगे हाउ देखत बड़ा जन एथी चार ओर से घेरल बा एगो गेटवा बा
2: हां
0: वही जो शंभू हत्यारा बा
2: अरे बाप ऊ तो ऊ का कर देले
0: हां दोनों ओर से तलवार लेके ठड़ा बा होई जू
2: आ
0: जे ही गई तारा से नौजवान जो केहू चल गई तो उनकरा के तो एक मिनट में खत्म कर दी
2: अरे बाप रे बाप तो हमरा को मार के का करिए हमरे ये सब पुरनिया आदमी कहई क्या म झूलाता मुंह है में दांत है ये नहीं के वो हमके मुआ के का पई है
0: सही है
2: हमरा के नहीं मुआ
0: देखो का करो भाई डंटा लो पकड़ो आ चलो हमरे संगे धीरे धीरे हम चलता नहीं
2: चलो ये हमार बाप चलो बाप
3: तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई 98-527-88-291 नंबर बाटे इस नंबर पर कॉल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84-28 के पता पर और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल है परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं पैर छू के प्रणाम करता नहीं चलता नहीं अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती तो अभी खातिर दीप विदा अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत हंसत रही मुस्कुरात रही नमस्कार।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम,
12: सुनो दिल से।
14: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी

0: अंगूरी अंगूरी
1: चम चम के अंगूरी बदन।
2: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती रेशमी ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती गमछा लुंगी साड़ी कुर्ता कंबल शॉल जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। मीरगंज, हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो एमजेम।
0: सुनो दिल।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है।

0: और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, Jio, Airtel, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-53-69-015 पे।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।

0: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
1: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
1: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
1: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
1: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
2: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
3: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सेवा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम। सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-6750।
7: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
8: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार नेविगेशनल सहायक Grade 3 के पदों को भरा जाना है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं 3 से 9 अक्टूबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र के अंक में। केंद्रीय जल आयोग प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रुप सी अराजपत्रित के 13 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। शैक्षिक योग्यता, पात्रता, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cwc.gov.in/recruitment। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में स्टाफ कार ड्राइवर के 4 पद भरे जाने हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण और वेतनमान की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cabsec.gov.in। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव और वैयक्तिक सहायक, ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। पात्रता संबंधी विस्तृत शर्तों, निर्धारित प्रपत्र की जानकारी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.ccsniam.gov.in। सैनिक स्कूल छिंगछिप मिजोरम में जीई आया महिला का 1 पद और वार्ड बॉय पुरुषों के 4 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट sschingchip.mizoram.gov.in। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल में विधि अधिकारी ग्रेड 2 उप कमांडेंट के 7 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर bsf.gov.in। महानिदेशालय सशस्त्र सीमा बल में वरिष्ठ प्रशिक्षक पर्वतारोहण का 1 पद रिक्त है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.recruitment.ssb.gov.in। SSB की मुख्य वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसका पता है www.ssb.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में इन पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद हैं प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और वरिष्ठ निवासी चिकित्सक। विस्तृत विवरण और अपडेट के लिए संस्थान की वेबसाइट देखिए। वेबसाइट है erp.iitkgp.ac.in/jobs। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निदेशक का 1 पद रिक्त है। इसे भरने के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iwai.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
15: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
16: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
15: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
16: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
15: कहाँ?
16: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
17: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
1: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
17: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
1: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
17: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
1: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 8023-3586 या 95-999-27-982। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
17: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
17: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
17: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
17: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, चैन पट्टी, गोपालगंज।
18: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
19: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
17: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
17: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
20: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
17: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
20: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रिक्वेंसी 90.4।
21: रेडियो रिमझिम,
2: सुनो दिल।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम,
12: सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545।
3: एक संदेश में ये बात कही, उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
5: देश आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद मनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
4: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
6: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
4: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
7: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर।
3: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रूपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिली सेकेंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है। ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
10: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
9: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
10: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
9: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिधवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
10: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
9: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
14: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
14: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
14: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710 30 92 या 97 65 65 750।
15: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, बैकुंठपुर के साफियाबाद में आग का तांडव, 19 लोग झुलसे, 2 बच्चों की मौत। आयुष्मान

रिसाव के कारण आग लगने की प्राथमिक स्तर पर जानकारी सामने आई है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू किया। गंभीर रूप से झुलसे 9 लोगों को बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर रेफर किया गया। अन्य घायलों का अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रेमनाथ मांझी के 6 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार और कंचन शर्मा की 1.5 वर्षीय पुत्री मिष्टी कुमारी के रूप में हुई है। दोनों बच्चों के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अस्पताल में घायलों के परिजनों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस घटना में प्रेमनाथ मांझी, शिव कुमार मांझी, राजेश शर्मा, जयनाथ मांझी, वीरेंद्र शर्मा, लक्ष्मण शर्मा और कंचन शर्मा के परिवार के अधिक लोग झुलसे हैं। इस घायलों में 5 वर्षीय अयांश कुमार, कुसुम देवी उम्र 40 वर्ष, शिव कुमार मांझी उम्र 42 वर्ष, बेबी देवी उम्र 22 वर्ष, कुमुद कुमारी उम्र 20 वर्ष, कुंदन शर्मा उम्र 17 वर्ष, चांदनी देवी उम्र 35 वर्ष, रीमा देवी उम्र 27 वर्ष, रोशन कुमार उम्र 6 महीना, कंचन देवी उम्र 28 वर्ष, छोटन शर्मा उम्र 16 वर्ष का अभी भी इलाज चल रहा है। साथ ही बैकुंठपुर के विधायक और शिक्षा मंत्री घटना स्थल पर पहुंचकर भी पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं और जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए जिला प्रशासन को निर्देशित दिए हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा और उचित सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। बताया जा रहा है कि झोपड़ी नुमा घर में खाना बनाने के दौरान गैस खत्म हो गया था। इसके बाद सिलेंडर बदला जा रहा था, इसी दौरान गैस का रिसाव होने लगा। इसी बीच गैस के संपर्क में आग की चिंगारी आने से फूस नुमा घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के घरों को भी अपने आगोश में ले लिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। सूचना मिलते ही हॉस्पिटल में बैकुंठपुर के विधायक और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज के जिलाधिकारी समीर सौरभ, डीडीसी गौरव कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शशि रंजन प्रसाद सहित तमाम पदाधिकारी और स्थानीय थाना की पुलिस हॉस्पिटल में पहुंची। घटना स्थल पर भी भारी संख्या में फोर्स को और फायर ब्रिगेड की टीम को भेजा गया। सभी लोगों ने मोर्चा संभाला और जल्द से लोगों के स्वास्थ्य और लोगों की मदद के लिए पूरी टीम ने काम किया। गांव में रहने वाले लोगों को छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दूर दराज से अस्पतालों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को मजबूत बनाया जा रहा है। इन केंद्रों पर नियमित जांच, दवा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और टेली कंसल्टेंसी जैसी सुविधाएं लोगों को उनके घर के नजदीक ही उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में सर्वे के अनुसार गोपालगंज जिला ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अगस्त माह की राज्य स्तरीय रैंकिंग में बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि जिला लगातार 3 महीनों से रैंकिंग में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। जून और जुलाई में दूसरे स्थान पर रहने के बाद अगस्त में जिला पहले स्थान पर पहुंच गया। जिले में वर्तमान में 240 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। इन केंद्रों पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं और इसी आधार पर हर महीने राज्य स्तरीय रैंकिंग भी तैयार की जाती है, जिसमें गोपालगंज इस महीने पहले स्थान पर रहा है। थावे प्रखंड के लछवार पंचायत के खानपुर अजमत गांव में एक 12 वर्षीय किशोरी जो 3 दिनों से लापता थी, उसका आज सुबह जैसे ही शव लोगों ने देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृत किशोरी लछवार पंचायत के खानपुर अजमत गांव के पवन सिंह पटेल की बेटी थी। इसका नाम संजना कुमारी बताया जा रहा है। यह पिछले 3 दिनों से लापता थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही एक पटीदार पर आरोप लगाया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही शव दिखाई दिया तो भारी संख्या में पुलिस FSL की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजन 2 दिनों से काफी खोजबीन कर रहे थे लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच गांव के ही एक व्यक्ति के घर के पास उसका शव मिला। परिजन हत्या की आशंका जताते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचकर मामले की बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं और घटना के बाद से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। कई अलग अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई है। भोरे थाना कांड संख्या 418-22 में आरोपियों को 30-30 वर्षों के कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। यह मामला एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना का बताया जा रहा है। इस मामले में भोरे पुलिस ने
आरोप

0: पर समर्पित किया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामलों में सुनवाई करते हुए आरोपी रघु माझी पिता नागेश्वर माझी साकिन बैरौना थाना भूरे और संदीप शाह पिता मैनेजर शाह साकिन पियरौठा थाना भूरे को इस मामले में दोषी पाया, जिसके बाद एडीजे 6 की अदालत ने आरोपियों को 30-30 वर्षों के कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6-6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में लोक अभियोजक दरोगा सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सजा सुनाने के बाद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके अलावा जादवपुर थाना कांड संख्या 56-22 NDPS एक्ट यानी नशे के कारोबार से जुड़ा है, इसमें भी आरोपी को 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 1,00,000 रुपए के अर्थदंड की सजा न्यायालय ने आरोपी को सुनाया। बताया जा रहा है कि अभी मामला 2022 का है, जहां एक ट्रक से गांजा उतार कर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर लोड किया जा रहा था, तभी पुलिस ने छापेमारी की थी और भारी मात्रा में गांजा को जब्त किया था। गांजा 370 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसी मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और एडीजे 1 की अदालत ने इस कांड के अभियुक्त मनोज राय पिता विलायत राय साकिन चंद्रपुरा थाना राघोपुर जिला वैशाली को दोषी पाया और 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसमें लोक अभियोजक ललन द्विवेदी की प्रभावी पैरवी से आरोपी को सजा मिली, जिसके बाद इसे जेल भेज दिया गया। इधर बरौली थाना कांड संख्या 108/2005 के मामले में भी आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 8,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि यह मामला मारपीट कर घायल करने के मामले और हथियार से फायरिंग करने के मामले से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया था और इसी मामले में एडीजे 15 की अदालत ने इस कांड के आरोपी को दोषी पाया, जिसके बाद अभियुक्त ओम प्रकाश शाह पिता सिंहासन शाह ग्राम नवादा थाना बरौली को सजा सुनाई गई और आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। जिले के ऐतिहासिक हथुआ राज परिवार में एक नए मेहमान का अवतरण हुआ है। बताया जा रहा है कि युवराज कस्तुभ मणि प्रताप शाही और युवरानी विदिशा शाही के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है, जो राज परिवार के 107वें उत्तराधिकारी बताए जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर दादा दादी महाराज बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही और महारानी पूनम शाही ने काफी उत्साह और जोश के साथ नए मेहमान का स्वागत किया। जश्न में बच्चे के जन्म के बाद हथुआ पैलेस में सोहर गाया गया, मिठाइयां बांटी गईं और ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई गईं। महाराज मृगेंद्र प्रताप शाही ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। हथुआ राज परिवार में इस नए मेहमान के आने के बाद से ही उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ है। माझा थाना की पुलिस ने पुरानी छठी माई के पास छापेमारी करते हुए जुआ खेलने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी राजा हुसैन पिता हाकिम मियां, शमसुद्दीन अली पिता राजू मियां, लौकुश कुमार पिता मदन महतो और राजा हुसैन पिता अली हुसैन, ये सभी लंगटू हत्ता थाना माझा के रहने वाले हैं। इनके पास से नगदी भी पुलिस ने जब्त किया है और जुआ खेलने के मामले में इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सिरीपुर थाना की पुलिस ने मंगलसूत्र झपटमारी कांड में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम छोटे लाल यादव और मोटर यादव बताया जा रहा है। इसके निशानदेही पर छीने गए मंगलसूत्र और वारदात में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब इस मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इसके दूसरे साथियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के मड़वा टोला गांव में एक बच्चे को सर्प ने डस लिया, जिसके बाद बच्चे को सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सदर अस्पताल में हंगामा भी किया। हालांकि पुलिस ने मामले को समझा बुझा कर शांत कराया है और इसकी जाँच की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के पॉक्सो कमेटी के सदस्य के निर्देश के आलोक में आज व्यवहार न्यायालय नए भवन के सभागार में गवाह सुरक्षा स्कीम विषय पर संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश सष्टम सह पॉक्सो न्यायाधीश पंकज चंद्र वर्मा ने किया। मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनूप उपाध्याय भी उपस्थित रहे और कमेटी से जुड़े तमाम सदस्य गण भी इस बैठक में हिस्सा लिए। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भागी पट्टी जांच चौकी पर छापेमारी करते हुए 1035 पैकेट शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी छोटू राम विजयपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव का बताया जा रहा है। यह बोलेरो में शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद द्वारा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास के मार्गदर्शन में गया जी के गजाधरपुर गांव में पशु स्वास्थ्य शिविर सह किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम धान प्रति भूमि प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इसके प्रधान अन्वेषक डॉक्टर राकेश कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक है। शिविर से कुल 110 किसानों जिनमें 34 महिला किसान भी शामिल थी को लाभ मिला। इस दौरान कुल 134 पशुओं जिनमें 83 बकरियां और 51 गाय तथा बैल शामिल थे, सभी को पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गयी। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 10 पैक्स समितियों पर धान अधिप्राप्ति के बाद चावल की आपूर्ति नहीं करने और कैश क्रेडिट की राशि वापस नहीं करने को लेकर कुल 1,91,59,000 रुपए का बकाया है और इनसे पैसों के वसूली को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बकायेदार पैक्स समितियों को 22 अक्टूबर तक पूरी राशि बैंक में जमा करने का निर्देश दिया गया है। तय समय सीमा में राशि नहीं लौटाने पर संबंधित पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक और प्रबंध समिति के सदस्यों के खिलाफ वाद दायर करने और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की तैयारी भी की गई है। मुख्य रूप से मछागर लच्छीराम पैक्स, मठिया हरदो पैक्स, बेलही खास पैक्स, चकरवा खास पैक्स, बरी रायभान पैक्स और बथुआ पैक्स तथा खवाजेपुर बुचिया और बथुआ मटिहनिया कला तथा जमसल पैक्स का इस सूची में नाम बताया जा रहा है। बरौली थाने के बघेजी गांव में पुरानी रंजिश और भूमि विवाद को लेकर एक 18 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि बघेजी दुर्गा मंदिर के पास हुई इस घटना में घायल अमन कुमार का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। उसके हाथ में चाकू लगा है। हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब पीड़ित के बयान पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घायल अमन कुमार खेत से पैदल ही अपने घर लौट रहे थे। यह सेना की तैयारी करते हैं। इसी दौरान दुर्गा मंदिर के पास बाइक से पहुंचे कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें यह जख्मी हो गए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बैकुंठपुर के साफियाबाद में आग का तांडव, 19 लोग झुलसे, 2 बच्चों की मौत। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सेवा में पूरे बिहार में नंबर 1 पर पहुंचा गोपालगंज जिला। 3 दिन से लापता एक बच्ची का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। कई मामलों में गोपालगंज की अदालत ने सुनाई आरोपियों को सजा। और हथुआ राज परिवार में 107वें उत्तराधिकारी का हुआ जन्म। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
10: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
11: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
1: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
12: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
1: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
12: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451551 पे।
4: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करें आप, तो हम आप सभी के बीच हर रोज़ ये बातें शुरू से लेकर आज तक बताते आ रहे हैं कि पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना है और पुराने गाने की फरमाइश करना है और किसी को सुनवाना चाहते हैं तो उसमें जानने पहचानने वाले को आप अपना नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आप यदि इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी फरमाइश करें। हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे मैसेज सेंड करें, टेक्स्ट मैसेज, जो छोटा सा फ़ोन से भी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा फ़ोन हो तो ही कर सकते हैं, छोटा वाले फ़ोन से ही आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और उससे भी गाने की फरमाइश कर अपने गाने को सुन सकते हैं। यहाँ पे पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय कैसे हैं आप सर, मनीषा फ्रॉम अमोवा से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बढ़िया। और अपना बताएं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, ठीक है। गाने का बोल है मुझे, गाने का बोल है मैं तुझे से ऐसी मिलूं कि तेरी जान बन जाऊं। और इस मैसेज को करती हैं फरीदा भंगरा से, प्लीज़ बजा दीजिए। तो बिल्कुल चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हम सब रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो एम जी एम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे अभी मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय जी, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में निशु। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं अंकित कुमार, मुझे गाना सुनना है। और गाने का फरमाइश किए हुए हैं, पास हो आने लगे जरा जरा। और डेडिकेट करते हैं ऑल रेडियो रिमझिम टीम को और सुनने वाले लिसनर को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545।
5: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
6: नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
5: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
6: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बात ना। आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम छिम नेट फंड 4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे अगे मिसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल रोहित जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अगे मिसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो भाई, कैसे आप? और मुझे भी गाना सुनना है। अनूप यादव लुधियाना पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल फरमाए बताए गाने, और गाने बताते हैं तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि जरा जरा से ही आगे प्यार बढ़ता है, एक बाइक रिएक्शन हो जाता है, हम भी जुड़ गए हैं सुनो बाबू, जरा जरा लेट। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय प्रणाम सलाम सर जी, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे और लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती विलेज उजवलिया उचका गांव प्रखंड से सुपर सॉन्ग, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज अभी गाने के फरमाइश वाले नहीं पहुंच रहे हैं, तो जो भी श्रोतागण अभी सुन रहे हैं तो अभी गाने के फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है और सीट खाली है। जो भी फरमाइश हमारे पास पहुंचेंगी उस फरमाइश को हम प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक प्यारा सा सॉन्ग अपने तरफ से प्ले करते हैं और सुनते हैं, तब तक आप लोग अपना मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ और फिर अपने गानों के साथ एंजॉय करें। एक भोजपुरी प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हैं हम।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल गाने फरमा सकते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई फरमाइश नहीं है तो मेरा बजा दीजिए प्लीज़, भेज रहा हूँ भक्ति गाना सुनना है, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार ओ मैया। तो बिल्कुल आपके फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सर माधुरी देवी मुझे सुभाष राजा का झिझिया गाना सुना दीजिए। बिल्कुल कोशिश रहेगा आपकी फरमाइश हम प्ले करें। फिलहाल रोहित जी के गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी फरमाइश हम सब।

रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश रोहित जी, आप आरती भजन की फरमाइश ना करें, दूसरे गाने की फरमाइश करें। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या बात है, सॉन्ग गा रहे हैं, अगर सीट खाली है तो मैं हाजिर हूँ और सॉन्ग के साथ। तो बिल्कुल गाने की फरमाइश करती हैं, भोजपुरी में ही बोलिया बोलेलू ये गोरिया, जैसे बोले कोई लरिया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और रोहित जी आप अपने गाने को चेंज करें, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आरती भजन की फरमाइश आप लोग ना करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी समय जो है मनोरंजन का है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, वाओ फेवरेट सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं रोशनी शौरी निशु जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा भी सॉन्ग बज सकता है क्या? बिल्कुल बज सकता है, एक एक करके फरमाइश प्ले करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंट स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97-0-97-06-575।
6: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
7: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
6: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर योग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
7: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
11: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

रेडियो एमसीएम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते सर, मनोज कुमार विलेज प्लस पोस्ट लामी छोर पुलिस स्टेशन भोरे डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज से। और गाने का बोल मितवा रे वो मितवा, फिल्म नाचे नागिन गली गली से बहुत दिनों के बाद संदेश भेज रहा हूँ। तो बिल्कुल बहुत दिन के बाद आप भेज रहे हैं, इतने दिन कहाँ थे, और आपकी याद भी आ रही थी लेकिन आपका मैसेज भी नहीं पहुँच रहा था। मनोज जी, आप कहीं भी रहें तो रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम से जुड़ने की प्रयास करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया कि कमाल के सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है गाने को चेंज करते हुए रोहित जी की तरफ से, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सर मेरा गाना बजा दीजिए, जगह खाली है आपके पास। बिल्कुल आप ही के गाने हम बजाने ही वाले हैं। तब तक आपका दूसरा मैसेज पहुंचा हुआ है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि मैसेज रात की चांदनी में सजे खुशियों का पैगाम, सोनू सर के शोर से महक उठे हर शाम, दोस्तों की महफिल यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे, हर दिल में प्यार और खुशियों की रोशनी आती रहे, सोनू सर को दिल से शुभ रात्रि का सलाम।

0: बबी से बूढ़ कथी परेशान करेलू तुहनी गावा सना रे
1: ए भगले।

रेडियो एमजी 90.4 एफएम से नतनी रवशबे। और चलिए अब ये गाना की इतना ही रहा दिया जा, ऐसे कि बहुत गाना नीमन बा। और ये गाना के फरमाइश करे वाला रानिया माधुरी देवी जी और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है। तो अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश रोहित जी की प्ले होगी। और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है माँ सिरा वाली तेरा सिर आ गया। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एम छम 90.4 एफएम पे।

रेडियो रिमझिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे समय से आगे निकल रहे हैं हम सभी। तो चलिए अभी गाने सुना जाए और आगे एंजॉय किया जाए। आगे मिसेस पहुँचा हुआ है और इस गाने की फरमाइश करती हैं निशु, और गाने की फरमाइश करती हैं, गाने का बोल देती हैं निमिया के डाढ़ लचके, भोजपुरी देवी गीत है। तो प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सब रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो रेम 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, और दशहरा में काजर लगा के घर से निकल रही, नहीं तो किसी चुड़ैल की नज़र लग जाए। प्रोग्राम से शुरू से जुड़े हैं, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हम थोड़ी देर से देखे हैं, और आप 10 मिनट पहले मैसेज किए थे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग, और मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि थैंक यू, आपको धन्यवाद है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अंतिम गाने प्ले करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया की, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। तो आप सब सुनते रहें रेडियो 94 FM, जो हमेशा कहते हैं सुने दिल से नमस्कार।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और 2 अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरु, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपए नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे का जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रोपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो नमस्ते नमस्कार कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494। जी हाँ, 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: जी, आपको स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: क्या खैरियत है जनाब?
6: जी सब बढ़िया है, अपना बताइए।
5: मेरा भी ठीक है।
6: वैसे
5: नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामना हो आपको और आपके परिवार को और रेडियो रिमझिम को।
6: जी जी, आपको भी नवरात्रि के लिए सारी शुभकामना।
5: और सब बताइए।
6: जी सब बढ़िया है। नाम बता दीजिए अपना।
5: मेरा नाम टाइम कैश।
6: जी
5: टाइम कैश नाम।
6: और कहाँ से?
5: माझा चलाने वाली हूँ।
6: जी तो क्या आप हेलो माय चॉइस में पहली बार कॉल की है?
5: नहीं, हम लोग कॉल करते हैं और मैम बैठती हैं, वो भी मतलब वो कल बैठती थी। अब आपका नाम नहीं जानते हैं लोग।
6: अच्छा जी,
5: पहले द्वितीया बैठती थी।
6: पहली बार बात हो रही है।
5: और सब बताइए मैम कैसी हैं, आपका परिवार कैसा है?
6: जी जी बिल्कुल, आपके जैसे सब कोई ठीक है, मस्त है, बिंदास है। हमसे गाना सुनिएगा।
5: ये नहीं नवरात्रि के बोले कोई लिया।
6: कौन सिंह की आवाज?
5: कौन सिंह की आवाज में है कोई लिया?
6: कोई लिया धीरे बोल।
5: हाँ कोई लिया धीरे धीरे धीरे, यही सुना दीजिएगा। अभी नवरात्रि का मतलब कैसे चल रहा है?
6: जी जी
5: टाइम चल रहा है नवरात्रि चला है, मतलब जाना बजा दीजिएगा। नवरात्रि चल रहा है ना अभी?
6: जी जी
5: यही सुना दीजिएगा कौन सिंह की आवाज में।
6: ठीक है, गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
5: आप तो सभी को आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, सभी दीदी लिस्नर को सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं, जो भूल गए जो बच गए हैं उन सभी को लिस्नर को सुनाना चाहती हूँ।
6: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
5: ओके बाय।

0: हेलो
1: जी
0: नमस्ते प्रणाम और जी माता जी और राधे राधे कैसन वानी
1: नमस्ते
0: प्रणाम राधे राधे
1: रानी
0: काहे बुलाइनी है हमारा के
1: ना जी रुआ के हम काहे बुलाए
0: और बताई रुआ कैसन वानी है बड़ा दिनों के बाद रुआ से बात होता
1: जी जी
0: और नाश्ता वास्ता हो गई बा
1: जी नाश्ता तो हो गई बार और भैया की ना
0: और कल के तो भूखा रहनी आसान हो गई बा और एक ही दिन में बुझाता जे खाना कितना फीका मिलल बा और वो बताई करे कितना दी
1: जी जी हम तो करे नहीं लेकिन ये पर ना कहीं
0: अच्छा चली कोनो बात ना और साथी अम्मी के भूखा रही था
1: चली
0: और माता रानी से ये हम कहले रही थी की उसे आगे ले जाये और काफी सुर्खिये में रहुआ जाये
1: जी जी
0: और भारती जी कहाँ वानी
1: जी हूँ के बाद
0: चली आज काफी लोग लाइन में लागल हुई नवरात्रि के माहौल चला था तो आज सुनते ही सोचे तो आज नवरात्रि सॉन्ग बजा दी रहुआ
1: जी जी बिल्कुल बता दी कौन सा
0: जी पवन सिंह जी की आवाज में ही गाना बा बहुत पुराना गाना बा रहुआ ज्यादा जो है कि ना पर ही मिल गई तुरंत और गाना के बोल बनी है तो मैया लोग आ गई एक तुरंत सर्च करें तुरंत आ जाये और गाना प्ले कर दी और सब लोग हम सब अरे चेक कर दे तनी रहो के दुनिया आदमी के और जितना आदमी सुना तनी सबको आगे भी कॉल नहीं बहुत लोग लाइन में लागल है।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: आपका भी स्वागत है
7: जी। क्या हाल चाल है?
6: ठीक है, अपना सुनाइए।
7: जी मेरा भी बढ़िया। बहुत लेट हो गया कॉल करने में।
6: अरे आज तो 300 बार हो गई। आज तो इतनी परेशान हुआ कि हद से ज्यादा। लगा भी तो आवाज भी नहीं आ रहा है।
7: हाँ।
6: मैं टाइम देख रहा हूँ कि अब लेट हो रहा है, लगता है नहीं लगेगा। चलिए कोई नहीं, लग गया। और सुनाइए।
7: बढ़िया
6: बढ़िया तो नहीं लग रहा है। और उपवास है कि?
7: ना ना, उपवास नहीं है।
6: कल भी थे, आज भी लगता है, आज भी है, लगता है। मन तो कर रहा है कि पूरे 9 दिन रहने को, देखते क्या हो रहा है।
7: अच्छा जी,
6: मेहनत के काम है। ठान लिए ना, ठान लिए। अब उन्हीं के हाथ में है, माता रानी के हाथ में।
7: जी जी,
6: उनके उनके भरोसे पे है। अभी बहुत दिन बाद में व्रत उठाया है, नहीं तो नहीं, मैं व्रत व्रत सब कुछ छोड़ दिया था।
7: ये बढ़िया। वैसे नवरात्रि के अवसर पे कौन सा गाना सुनिएगा?
6: नवरात्रि के अवसर पे तो गाना सुनना है नवरात्रि का ही। 2 मिनट समय दीजिए।
7: बिल्कुल।
6: 9 दिन कैसे रहू उपवास, पवन सिंह और मीनू अरोड़ा का।
7: अच्छा,
6: बहुत पुराना गाना है। 9 दिन में बूढ़ी कैसे रहू उपवास हो।
7: गाना तो बहुत ही अच्छा है,
6: तो यही सुना दीजिए। पुराना ही सॉन्ग है, ज्यादा करके आज इसीलिए किया हूँ कि कम से कम एक नवरात्र के गाना सुन लूँ।
7: जी जी बिल्कुल, गाना तो बहुत ही अच्छा बताते हैं।
6: अच्छा तो बताते हैं,
7: और गाना भी बताए हैं और डेडिकेट भी करिए।
6: डेडिकेट आपको रहेगा और भारती जी को भी रहेगा। गणेश सीपरा नारायण जो भाई बहन जुड़ती है वो मुझे भी सुनाती है, तो हमें भी दायित्व बनता है उनको भी सुनाने के लिए।
7: जी जी बिल्कुल।

0: भी डेडिकेट रहेगा और अनिल भाई को भी रहेगा, प्रमुख भाई को भी रहेगा, सन्यासी रंजन बाबा के भी रहेगा, आज जितने माता रानी के भक्त है सबके लिए।
1: ओके जी,
0: तो फिर सुनाइए
1: जी। चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते नमस्कार, मैं संजय कुमार साहब, मेरा नाम सिंह पूर्वी चंपारण बिहार से बात कर रहे हैं।
1: जी नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: जी मेरा हाल खबर बल्कि बढ़िया है, आपका सुनाइए आप कैसे हैं? आप पूरे रिंगिंग संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
1: जी जी मैं भी बढ़िया हूँ और यहाँ पे सब कोई भी ठीक है।
0: चलिए और सब ठीक ठाक?
1: जी जी बिल्कुल, अपना बताइए कि आप कैसे हैं?
0: जी मेरा भी एकदम बिल्कुल बढ़िया है। नवरात्रि का दिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं विशेष नवरात्रि विशेष में।
1: जी जी आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: जी थैंक यू। आपको लगाए तो रेडियो संपूर्ण परिवार कही ना कि जितना सुन रहे हैं सभी दोस्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे से। आज गाना सुना दीजिए।
1: बिल्कुल बता दीजिए।
0: चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, कुछ भी याद कर सकते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: पहले आपको रेडियो इंजन संपूर्ण परिवार को आप दोस्त में हो गया सकाना से मोहम्मद साबे जी, कमल से उत्तम कुमार जी, रामिला सतत कुशवाहा जी, कृति बगान से अरुण कुमार, कला भाई कोटदम से नरेश सोहनी, दीपक ठाकरे, जुना सात राजमंदिर सतत कुशवाहा, राम बाबू भैरवगंजी, शंकर कुशवाहा, पारस शर्मा, राजेंद्र यादव भांसी, संतलाल गौतम, मोहम्मद तलाल अंसारी मझवलिया के हमारे नाम से जाना पसंद तमाम दोस्तों विशेष करके सुना दीजिए। शंकर प्रसाद शंभू जी, पारसनाथ कुशवाहा, पारस शर्मा हमारे नाम से जाने पसंद तमाम दोस्तों सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्ते नमस्कार।
1: जी तो नमस्ते, आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।
0: थैंक यू।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: क्या हाल है करजी जी?
3: जी जी ठीक है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
2: सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके सूरत फैमिली।
3: जी जी, आपको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।
2: कह रहे हैं कि नवरात्रि आप कर रहे हैं कि
3: नहीं? नहीं कर रहे हैं
2: जी,
3: तबियत सही नहीं रह रहा है, इसके वजह से नहीं कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं, तो लास्ट वाला कर लीजिएगा।
3: जी जी,
2: और सब बताइए, मौसम कैसा है गोपालगंज का?
3: मौसम तो ठीक है, हल्का धूप निकला हुआ है।
2: रात को यहाँ से बारिश हुआ था और सुबह में भी 10 बजे तक बारिश हुआ है दिल्ली के अंदर में, लेकिन अब धूप निकल गई है और गर्माहट आ गई है, इसलिए तो दिल्ली शहरी इलाका है ना, थोड़ी देर में गर्मी उत्पन्न हो जाता है।
3: जी जी,
2: अभी निकल गया है, आसमान बिल्कुल चंगा हो गया है।
3: जी,
2: तो यहाँ से नस्तीफा नहीं हुआ कि नहीं? हमको लगता है कि लास्ट चल रहा है कॉल।
3: नहीं, अभी 2 कॉल और रिकॉर्ड करना है।
2: 2 कॉल और लेना है
3: जी।
2: मैं रोजाना पूछता हूँ कि भारती जी कहाँ है, हमारे रानी मुखर्जी जी वो अपने काम में लीन है, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, रानी मुखर्जी जी से उतना वार्तालाप नहीं हो पाई थी।
3: जी जी, हाँ हो रही है ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
2: आपसे भी बात करके अच्छा लगते हैं हम लोगों को, जितने भी लिस्टर कॉल करते हैं तो सही बात करते हैं, और रही बात की आपकी आवाज़ों तो जितने लिस्टर है सारे दीवाने पर।
3: जी जी,
2: हाँ कोई अच्छी नहीं है, साइंटिफिक नहीं है कि हमारे वजह से लोग कहता है, लेकिन आवाज ही आपको आकर्षित करता है सारे लिस्टर को।
3: सब लोग बोलते हैं लोग राम जी नाम रखे हैं, हम लोग भी बोलेंगे लोग, पर बहुत परफेक्ट रखे हैं लोग, ऐसे बोलता है।
2: परफेक्ट रखे हैं
3: जी, बोलता है लोग की उनका जो चॉइस है ना परफेक्ट है। और आप नाश्ता किए हैं कि नहीं?
2: जी, मैं नाश्ता करके निकलता हूँ, और रही बात की लोग और आपके रेडियो से, हम लोग पुराना लिस्टर है ना, अपने आरजे आए, कितने आरजे गए, और जहाँ हम लोग हैं वहीं पर स्थापित व्यवस्थापित है, आगे कहाँ जाएंगे, हम लोग तो सिर्फ आवाजों को ढूंढते हैं, और एक रेडियो रिंगिंग से ऐसा लगा हो गया है कि आरजे लोग हो या कृपा शंकर चाचा जी हैं, उनसे भी ज्यादा इतना प्यार मोहब्बत, एक मैंने समझिए फैमिली रिश्ता की तरह हम लोग रहते हैं, और कोई भी बात उठता है तो निसंकोच हम लोग रखते हैं, और उस बात को बहुत मानकारिती से कृपा शंकर चाचा समझते हैं कि ठीक है, लिसनर है, लिसनर के मन में क्या है नहीं है, हर चीज लिसनर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ हमको क्या करना है नहीं करना है, क्या सुनना है नहीं सुनना है, क्या चलाना है नहीं चलाना है, लेकिन आजकल जितनी भी प्रोग्राम है रेडियो इंजिन के दर्शाई गई है और चली गई है, तो सारे प्रोग्राम एक से बढ़ के एक चलता है, इसलिए कि ये हम लोग का बिहार का माटी का सुगंध का एक ऐसा रेडियो स्टेशन है कि जिसे हम लोग का इतना लगाव है कि हम लोग को कहीं जाने को फील ही नहीं करता है।
3: जी जी, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो आप लोग इतना सारा प्यार दिए, और वैसे
2: आप लोग भी यही कहेंगे कि जहाँ पे है ना रेडियो रिंगिंग में कोई भी आता है तो यहीं से सीख के जाता है, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि अपना मनोबल और अपना माइंड से कुछ ऐसा काम कीजिए कि आगे चल के आप लोगों को भी कुछ और भी करने को, इनसे भी बेहतर मिले आप सभी को, समझे? नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो नवरात्रि के टाइम एक गाना सुनना चाहेंगे, आज हम आपसे नुआखिया को देख दिया, या लखा सिंह लखविंदर का कोई अच्छा सा उसमें माता की सॉन्ग हो तो वो शामिल कर लीजिएगा, लखा सिंह लखविंदर का, मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको, यदि उनमें से भी हो तो एक अच्छा सा गाना निकालिएगा, और इस गाने में सबसे पहले रानी मुखर्जी जी हैं, भारती जी हैं, और तमाम जितने रेडियो लिसनर ये गाना सुनेंगे तो उन सभी को ये बाकी चौथी का गाना है, उन सभी को डेडिकेट।
3: ओके जी, चलिए तो फिर इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं
2: जी। तो ठीक, एक बार और नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार के, पूरे रेडियो रिमझिम टीम को। प्यार भरा नमस्कार आप सभी से, हम फिर विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको।
3: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: नमस्कार नमस्कार मैडम
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। जी बिल्कुल बता दीजिए।
1: मर्द फिल्म का सुना दीजिए मंग ओ मेरी माँ। से पहले आपको रहेगा और जितने भी लिसनर है रिम जी ने।
0: जी जी ये गाना जो बताया गा के बताइए मुझे।
1: जी हम नहीं अभी जाकर।
0: चलिए कोई बात नहीं है, वैसे नाम बता दीजिए अपना।
1: ज्योति कुमार बात कर रहे हैं, जिला भागलपुर ग्राम।
0: चलिए चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूँ तुझे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैम नमस्ते।
6: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
6: जी सुनील जी, कैसे हैं आप?
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं रेडियो रिमझिम का इंतजार करते हुए मैम।
6: जी जी
5: जी, अभी तो फोन ट्राई कर रहे थे, फोन बिल लग गया, तो गाने के बोल है तू पागल पे नहीं आवारा, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दो की लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
6: ओके सुनील जी, तो आपकी तरफ मौसम कैसा है उधर?
5: हमारे यहाँ तो मैम अभी तो धूप बहुत है कड़ाके की, और उसके अलावा फिर गर्मी है, और शाम सवेरे तो ठंडा मौसम है मैम।
6: जी जी, चलिए सुनील जी, तो फिर आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
5: जी धन्यवाद मैम।
6: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्ते भारती मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मैं एक घंटा फोन लगा लग ही नहीं रहा।
1: अच्छा जी,
0: कल उस दिन जो शुक्रवार का गाना मैंने रिकॉर्ड किया तो कभी सुनते नहीं किए। नहीं बजा, कितने बार मैं सुना बजता ही नहीं किया है मेरा गाना। और लोगों का गाना बज सकता है, बज रहा था।
1: जी जी, तो अभी क्या है ना, अभी कॉल बचा हुआ है तो कहीं आज बजेगा।
0: और गाना सुनना है वो ओम सिंह का गाना।
1: कौन सा?
0: ओम सिंह का गाना सुनना है, देवी का भजन,
1: इनका देवी गीत। अच्छा, वैसे आप अपना नाम बता दीजिए।
0: मेरा नाम गोविंद कुमार, जलंधर पंजाब से।
1: अच्छा, तो गोविंद जी पहली बार कॉल किए हैं हेलो मैसेज में?
0: पहली बार नहीं, मैं तो कितने बार फोन किया।
1: सर जी, ऐसे लगता है कि आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: टन सोनी मैडम रिकॉर्ड करा रहे थे ना।
1: जी, तो लग रहा है आपसे पहली बार बात हो रही है मुझसे।
0: अच्छा, मनोरमा मैडम भी जो है उस दिन शुक्रवार का कहता था भारती मैम।
1: जी जी, और गाना जो आप बताए हो, गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले आपको और रेडियो रंजन सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: जी,
1: तेरी सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: ओके मैम, थैंक यू,
1: वेलकम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
7: जी नमस्ते, नमस्कार। आरती जी बोल रहे हैं?
6: नहीं
7: जी, नर्मा जी।
6: हाँ जी।
7: इतना दिनों से के बाद आज कॉल लगा हुआ है।
6: अच्छा जी,
7: बहुत दिनों के बाद। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक घंटा प्रयास कर रहे हैं।
6: कोई बात नहीं, अब लग गया ना।
7: बात करने के लिए बहुत बहुत परेशान होना पड़ता है, सब आपसे बात होता है।
6: अच्छा जी, वैसे नाम बता दीजिए अपना।
7: मेरा नाम बिंदेश कुमार शर्मा, जिला मठ से बोल रहा हूँ, गोपालगंज जिला से।
6: जी जी, नाम क्या बताया?
7: बिंदेश कुमार।
6: अच्छा जी,
7: और सब बताइए अपना, बहुत कैसा है आप?
6: जी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताइए कि आप ठीक ठाक है ना?
7: हाँ ठीक हूँ। बहुत रेडियो रेंजन बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा रेडियो रेंजन से लगाव है, हम रेडियो से गाना सुनते हैं।
6: अच्छा जी।
7: मोबाइल से नहीं सुनते, हम रेडियो रखे हैं और रेडियो रेंजन बहुत ढेर से सुनते हैं।
6: मतलब लगभग हम लोग
7: मठ से, जितना मठ से रहते हैं, हनुमान जी का बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मठ है, वहाँ पर 24 घंटा सीताराम का जाप चलता रहता है, वहाँ पर रहते हैं, 24 घंटा चलता है, जाना में 6 घंटा ड्यूटी देते हैं सीताराम में। इनको दूसरा काम नहीं, वही काम करते हैं, और हम लोग को खाना पीना और चार्जर महीना सब कुछ वहाँ पर मिलता है।
6: वहाँ
7: पर आते हैं और वहाँ पे भी सुनते हैं आपका, जिसका पसंद आता है, जब जब समय ड्यूटी का समय हो जाता है तो चले जाते हैं, बाकी समय रेडियो से लगा रहता है, रेडियो सुनते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया भी प्रोग्राम सब चलते हैं। आप लोग के भी जब समय आते हैं, जब मैसेज पहुँचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमको भी उत्साह होता है कि इस पर बात हो जाए, इस पर बात हो जाए, इसीलिए बार बार आदमी कॉल करते हैं कि एक बार तो बात हो जाए, बात होता है। गाना तो बहुत बढ़िया में बैठते हैं, लोगों तो फरमाइशी वाला बढ़िया में बैठता है, आपका से तो बढ़िया लोगों की फरमाइश अच्छा लगता है, आत्मा को च्वाइस रहता है कि एक बार भारती जी हो चाहे मनोरमा जी हो, आप लोग का आवाज सुनने से एक बार मन करता है कि हमसे भी बात हो जाए ना, हफ्ते में एक बार यदि गाना अपना बच जाए, एक बार बात हो जाए तो बहुत है, इसीलिए हम बहुत प्रयास करना है।
6: वैसे आज क्या है आपकी फरमाइश?
7: आज फरमाइश हमारा गाना यही बजा दीजिए, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तुम मेरी बाहों में। इस मूवी से है, किस फिल्म का हमको थोड़ा मालूम नहीं है, गाना अगर बढ़िया हो उनको भी सुनवाना है, और भारती जी और जितने सुनने वाले हैं सब लोग के साथ, अब आप लोगों के साथ गाना सुनना है, सुना दीजिए।
6: जी जी बिल्कुल, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
7: जी नमस्कार।
6: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो।
1: सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। मैं अहमद अली सारी आवाज नंबर एक से।
0: जी जी कैसे हैं आप?
1: हम तो अच्छे हैं मुनर्मा मैम।
0: हाँ जी
1: कैसी हैं आप?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: कब से ट्राई कर रहा था, बहुत मेहनत के बाद लगा है।
0: अच्छा जी।
1: हाँ कब से क्या क्या बोल रहे थे कि लग जाओ लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा।
0: अच्छा जी ये बात है।
1: तो करना पड़ता है मैम, मोबाइल को मेहनत करना पड़ता है बहुत, तब लगता है कॉल।
0: चलिए इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उनके बारे में इतना कुछ बोला।
1: आज हमको भोजपुरी सॉन्ग बज सकता है क्या?
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो बज सकता है तो ये गाना है पवन सिंह का, जब से नैना लड़ल बात है आगे बढ़ल, तो ये गाना सुनना है।
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे। क्या ये गाना आप मुझे गा के बताइएगा?
1: उतना हमको नहीं आता है भोजपुरी गाना, ये अच्छा लगता है थोड़ा गाना, इसलिए एक बार गा देते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, बस इतना ही।
0: जी आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
1: अरे हम लोग ने बहुत पहले अंताक्षरी में जीते हैं। हाँ गाना बताए हैं, सुनाना है पहले तो आपको और भारती मैम को, अक्षरी को, समराम रशीद को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को, असलम भाई हैं।
0: जी चलिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको गाना सुनाने के लिए।
0: जी जी तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, स्वागत है।
6: ठीक
5: बाप, बताई
6: ठीक टाइम नहीं करिए, काम से
5: कितना बिजी हो गई बानी की टाइम होगा के
6: आज पूरे मतलब बिजी रहे तो पड़ा था, क्या करें।
5: बात तो सही बात,
6: आज कौन दिन के बाद धराइल जानी बताए।
5: अच्छा जी,
6: क्या आज हमने देने की 3 दिन से वो नहीं किया होता लगता है। भागते थे 3 दिन से कौन भी करते हैं, शुक्रवार सोमवार को बुधवार को भागते थे कर रहे हैं। आप तो कह रहे नहीं गए,
5: सब का होता खाना न
6: होगा। हाँ, खाना नहीं हो गया,
5: सब का बात नहीं।
6: और सब बताएं, गोपालगंज की मौसम कैसा है?
5: गोपालगंज की मौसम ठीक बा, हल्का धूप निकल
6: रहा है, बहुत तेज धूप हो
5: गया। वैसे नाम बता दिया अपन।
6: हमारा नाम गणेश कुमार, प्रणाम कर रहे हैं, दिन गुड़ चुके भोर पड़ गयी, प्रणाम करेगा।
5: बाप रे, हम दोनों हाथ
6: दिन के बाद
5: जी
6: ना करते नहीं है, वो सब नहीं, जब हम धराव तो नहीं है ना, सुन रेकॉर्डिये ना कर देनी है। ये तो बात लगे,
5: तो फिर आज के फरमाइश बता दी अपन।
6: फरमाइश आज की मस्ती मस्ती सॉन्ग बजा दी, ढाकी भी सुन ले मनोरमा दीदी।
5: हाँ जी,
6: मस्ती मस्ती वाला सॉन्ग बजा दी। हाँ, ये गाना सबसे पहले रोला का गाना सुनवाए, ढाकी दीदी के सुनवाए, तो एक रानी जी बानी वहाँ का सुनवाए के बाद, और रेशमा जी के सुनवाए के बाद, राघव जी के सुनवाए के बाद, और करिश्मा जी के सुनवाए के बाद, और हमारे गाँव के मनीष भैया के सुनवाए के बाद, और पूरा रेडियो रंजन के सब और
5: करके सुनवा दे। जी बिल्कुल, चली तरह गाना हम प्ले करता नहीं।
6: ठीक बा, नमस्ते
5: नमस्ते, सुनत रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जी
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते जी।
1: जी नमस्ते
0: जी, हमें अपने मनपसंद गाने बजवाने हैं।
1: जी जी बिल्कुल बजवाएंगे, पहले नाम बता दीजिए अपना।
0: जी मैम, मेरा नाम खुशी मिश्रा है।
1: खुशी?
0: हाँ।
1: वो कहाँ से बोल रही है खुशी जी आप?
0: जी हम मैम लखपतिया मोड़ से बोल रहे हैं, नियर बाय पानीपत से।
1: अच्छा, तो खुशी जी आप रेडियो रिमझिम में पहली बार कॉल की है?
0: हाँ जी जी, पहली बार कॉल की है।
1: अच्छा जी, तो खुशी जी कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: मैम हमको गाना सुनना है 1920 फिल्म का गाना है एदिल ठहर जा।
1: ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे दो लाइन?
0: एदिल ठहर जा, जीने की कोई एक वजह ढूंढ ले, डर कर वरना तू दिल की फिक्र।
1: ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: यस मैम, मैं अपनी बहनों को सुनाना चाहती हूँ और सारे रेडियो रिमझिम जितने भी सुने उनको।
1: खुशी जी, तो आप ये रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं? रेडियो के माध्यम से कि मोबाइल ऐप के जरिए?
0: मोबाइल से मैम सुनते हैं।
1: अच्छा जी, कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है मैम।
1: जी जी
0: जी, थैंक यू मैम गाना बजाने।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैम, नमस्ते।
6: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
6: जी सुनील जी, कैसे हैं आप?
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं रेडियो रिमझिम का इंतजार करते हुए मैम।
6: जी जी
5: जी, अभी तो फोन ट्राई कर रहे थे, फोन बिल लग गया, तो गाने के बोल है तू पागल पे नहीं आवारा, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दो की लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
6: ओके सुनील जी, तो आपकी तरफ मौसम कैसा है उधर?
5: हमारे यहाँ तो मैम अभी तो धूप बहुत है कड़ाके की, और उसके अलावा फिर गर्मी है, और शाम सवेरे तो ठंडा मौसम है मैम।
6: जी जी, चलिए सुनील जी, तो फिर आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
5: जी धन्यवाद मैम।
6: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्ते भारती मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मैं एक घंटा फोन लगा लगा ही नहीं रहा।
1: अच्छा जी,
0: कल उस दिन जो शुक्रवार का गाना मैंने रिकॉर्ड किया तो कभी सुनते नहीं किए। नहीं बजा, कितने बार मैं सुना बजता ही नहीं किया है मेरा गाना। और लोगों का गाना बज सकता है, बज रहा था।
1: जी जी, तो अभी क्या है ना, अभी कॉल बचा हुआ है तो कहीं आज बजेगा।
0: और गाना सुनना है वो ओम सिंह का गाना।
1: कौन सा?
0: ओम सिंह का गाना सुनना है, देवी का भजन,
1: इनका देवी गीत। अच्छा, वैसे आप अपना नाम बता दीजिए।
0: मेरा नाम गोविंद कुमार, जलंधर पंजाब से।
1: अच्छा, तो गोविंद जी पहली बार कॉल किए हैं हेलो मैसेज में?
0: पहली बार ना, मैं तो कितने बार फोन किया।
1: अच्छा जी, ऐसे लगता है कि आपसे पहली बार बात हो रही
0: है। मैडम रिकॉर्ड करा रहे थे ना।
1: ये तो लग रहा है आपसे पहली बार बात हो रही है मुझसे।
0: अच्छा, मनोरमा मैडम जी बोला था उस दिन शुक्रवार का कहता था भारती मैम।
1: जी जी, और गाना जो आप बताए हो, गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले आपको और रेडियो रंजन सुनने वाला सभी श्रोताओं को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: जी,
1: सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: ओके मैम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
4: जी,
5: सलाम मैम।
4: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत हो रहा सुनना।
5: जी बेतन वाली
4: जी, बिल्कुल ठीक बानी, रुआ बताएं।
5: जी हम अच्छा बानी
4: जी,
5: बहुत मेहनत करे मैम आज।
4: अच्छा जी, कुछ दिन से रुआ पीछे छूट जाता नहीं।
5: पीछे ना मैम, लोग बहुत गलत करता नहीं, ठीक बा। हम एक निकले वाला बानी।
4: ना ना ऐसा मत करी, क्या हो गई बा?
5: बहुत खराब लगा मैम, सोच सकता नहीं रहूंगा। रंगा तो शिकायत है, अच्छा नहीं।
4: अच्छा, क्या हो गई बा? जान सकता नहीं हम।
5: रंगा तो जानते वाली भाती मैम से दू दू गो रिकॉर्डिंग अभी तक बाजल नहीं हुआ।
4: जी जी, तेरा और गाना बाद दे कहा ना कि बहुत सारा कॉल आई रहला तो बारी बारी सबके बजावल जाला।
5: मैम हम आपके बता दें कि अच्छा वो कहीं भारती मैम की चला दे, लेकिन रखी इतना दिन हो गया चले नहीं। हम सोचने की निकल जाये शो से, कहा की रवल
4: ना ना ऐसा मत करी, रवल शो से निकल जाए तो अच्छा ना लगे।
5: जी मैम, हम आप लोग के मतलब ऐसी समझे नहीं, जैसे की जिम्मेदारी आप लोग के, लेकिन हमने तो मतलब सुने के चाहिए।
4: जी जी, तो फरमाइश बता दी हम।
5: मैम तो आज हम रखे जमाना है दीवाना फिल्म से गाना सुनाया, और गाना के बोल अपने मन तो बजा दे।
4: ना ना रुआ, इतना मुश्किल से कहिए वानी तो रुआ बताती तो बहुत ही अच्छा लगे।
5: तो बात मैम सही कहता नहीं, आज बहुत मुश्किल से लगल बा।
4: जी तो बता दी अपने पसंद से।
5: जी मैम गाना पा गाना के बोल बा, जमाने को अब तक नहीं है बता, अगर हो गई हो हमसे कोई खता।
4: जी एक बार और बता दी।
5: जमाने को अब तक नहीं है पता, अगर हो गई हमसे कोई खता, क्या होगा क्या होगा।
4: जी जी, कभी तरह गाना हम प्ले करता नहीं।
5: जी

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते।
1: अरे बाल लेट ले थोड़ी होता
0: जी जी, अरे लेट हो गई है।
1: हम था से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद
0: जी। जी कैसन बानी?
1: ठीक बानी, अच्छा बानी।
0: तब खाना ना भइल?
1: हाँ खाना वाना हो गल बा, सब हो गल बा। बैठो मैम दुकान पर, बाजार को कहनी तो कहनी एक और नंबर लगाए 12:30 में, तो जखनी आगे अभी जोर था तो जखनी डबले नंबर ना लगे तब हम अथी करते रह। गाना सुना दी?
0: हाँ बता दी।
1: आजा रे दिलवर आजा, दिल की प्यास बुझा जा।
0: जी जी, ये गाना गा के बता सकते हैं हमके?
1: हम थोड़ा एक लाइन लिखला है मैंने, आजा रे दिलवर आजा, दिल की प्यास बुझा जा।
0: जी जी, गाना तो बहुत ही अच्छा बा। और गाना कैसे सुनाए के लिए चाहता नहीं?
1: सब कुछ सुने, रेडियो रिमझिम जितना सुनता सब कुछ सुने।
0: जी जी, चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: Pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029994911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खाती हम भागल ना है। आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं
2: बनबू।

0: अरे एक करे जा, जितना तोहरा से रात में बात कोइले बनी न उतना केहू और खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हो
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: बनाओ तर
1: अरे करे जा हम बरसिंगा खाली गर्जे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: कहूंगा कि हम ग्रेड ए पोल नहीं, पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: अरे काहे जिया दुखौला, अरे काहे जिया।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।